हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र अपने सभी श्रोताओं को FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र

क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार, आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। अर्थात जो व्यक्ति हमारे मन या हृदय में बसता है वो हमसे दूर रहकर भी निकट ही मालूम होता है, जबकि जो व्यक्ति हमारे हृदय में नहीं बसता है वो पास रहकर भी दूर ही मालूम होता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए एक सूचना। जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोख है के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग 258। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार हैं गायक संगीतकार रविंद्र जैन। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिएगा प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 बजे से सुबह 7:30 से हम हैं राही प्यार के।

सुबह 8:15 से त्रिवेणी आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार सुनिएगा। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक अभिनेता महमूद पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11:00 रात्रि 11:00 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से आपको सुनवाएंगे यादों की महफिल।

सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे, दोपहर 3 बजे से सखी सहेली, आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर मीनाक्षी सिंघवी उप महानिदेशक आकाशवाणी मुंबई से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश के अंतर्गत हेलो फरमाइश, संवादक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से, झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 संध्या से संध्या रंजन, और शाम 7 बजे से फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जयमाला, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत।

रात्रि 8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी बनारसी सर, लेखन शेखर झा का, निर्देशन विजय दीपक छिब्बर का। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, रात 10 बजे से आपको सुनवाएंगे छाया गीत, आलेख

दीपक छिब्बर का रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 से आपके लिए, रात 10 से आपको सुनवाएंगे छाया गीत, आलेखन स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी, रात 10:30 से ढलती जाए रात।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें सखी सहेली के हमारे विशेष प्रसारण दोपहर 3 बजे से सुनिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर मीनाक्षी सिंघवी उप महानिदेशक आकाशवाणी दूरदर्शन मुंबई से ममता सिंह की बातचीत। झरोखा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अरण्य में सीता की खोज में भटकते श्रीराम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्रीराम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आप परमधाम जाइए, किंतु वहां पिताजी से सीता हरण का दुखद समाचार न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे कुटुंब सहित स्वयं जाकर उन्हें सारी कथा सुना देगा।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता सुनने वाले सभी श्रोताओं की सेवा में राजेश जौहरी का एक बार फिर नमस्कार और इस कार्यक्रम में एक बार फिर रविंद्र जैन साहब का स्वागत। नमस्कार दादा।
2: नमस्कार।
1: पिछली दो कड़ियों में हमारे श्रोताओं ने आपके बारे में काफी कुछ जानना शुरू कर दिया। वो आपके संगीत, आपके लेखन और आपकी प्रतिभा से परिचित हो चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा आपके तकनीकी पक्ष की ओर चलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपने शास्त्रीय संगीत के बारे में जो बात की थी उसका अध्ययन कितनी गहनता से आपने किया है और कितनी सच्चाई के साथ शास्त्रीय संगीत को आपने फिल्म संगीत में ढाला है। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत को आपने क्यों जरूरी समझा फिल्मी गानों के माध्यम से श्रोताओं तक लाने के लिए और शास्त्रीय संगीत की सार्थकता क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है।
2: तो शास्त्रीय संगीत फिल्म हो या जीवन हो, बिना शास्त्र के जाने हम संगीत की बात नहीं कर सकते। पहले संगीत के लिए मैं चार पंक्तियां तुम्हें सुना रहा हूं।
1: जी।
2: ये भेद हृदय के खोलता है, प्राणों में अमृत घोलता है, संगीत वो जिंदा जादू है जो सर पर चढ़कर बोलता है।
1: वाह वाह, क्या बात है।
2: तो ये जादू तभी सार्थक होता है जब इसके बारे में हम थोड़ा जान लें कि यह है क्या। सिर्फ सुनना अगर हमें आ जाए ठीक से, शास्त्रीय संगीत खासतौर से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात, एक अचीवमेंट, उपलब्धि है वो एक। मैंने चूंकि प्रारंभ से ही शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली है तो मैं गायन तो नहीं जानता लेकिन उसके मर्म को अवश्य जानता हूँ कि इसमें क्या है और कितनी गहराई है। वो एक जगह मेरे एक गीत में मैंने कहा है, वो गीत

0: बहुत ही सुंदर ढंग से आपने संगीत के मर्म को बताया। अब ये बताते चलें कि शास्त्रीय प्रणाली को, शास्त्रीय विधा को आपने इतनी सरलता से फिल्मी गानों में कैसे उडेला और कैसे उन गानों को यश और प्रसिद्धि दिलाई।
1: दरअसल संगीत के, खासतौर से फिल्म संगीत के दो ही स्तंभ हैं, एक शास्त्र और एक लोकधुने। बाकी तो उनकी सजावट है, चाहे हम जिस तरह उनको सजा दें, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे भी कर लें, है ना, मगर ये दो ही चीज़ों पे सारी बात आधारित है। और मैंने दोनों ही को मिला के और उसका अरेंजमेंट जो है ना वेस्टर्न फैशन में उसको सजा के, वेस्टर्न मतलब उनकी बीच की बात नहीं कर रहा
0: जी,
1: वेस्टर्न जो प्रणाली अरेंजमेंट की है, कॉर्ड सिस्टम हार्मोनाइजेशन से उसको सजाया है और उसकी आत्मा
0: को जीवित रखा है,
1: पूर्णतः भारतीय रखी है।
0: कुछ ऐसे गीतों का विवरण दें मैं जो आपके गीत हैं और जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं।
1: गीत मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ कि फिल्म गीत गाते चल से
0: जी,
1: ये फोक भी लगेगा आपको, राग भी लगेगा
0: जी,
1: ये इतने निकट हैं दोनों, फोक और राग जो है ना
0: जी,
1: कि आपको लगेगा कि ये राग है कि फोक है, समझना मुश्किल हो जाएगा। ये चारुकेशी है।

0: दादा, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ऐसे और गीतों के बारे में जानना चाहते हैं जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, मगर उनका जन्म उस पर्टिकुलर राग में क्यों किया आपने? क्या लोकेशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी, क्या कारण थे? ऐसे कुछ गीतों का रेफरेंस दीजिए।
1: ये लता जी ने बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने गाया है इसको। इसी भी साहब की फिल्म फकीरा का गाना है।
0: जी, वाह वाह।

0: क्या धुनी उसने यार रोशन साहब ने बनाई थी। वाह वाह, इस राग में मुझे ख्याल।
1: दादा कौन सा राग है ये?
0: भीमपलासी।
1: अरे वाह, सुनाइए।
0: रोशन साहब का गाना था, आई थिंक रोशन साहब का ही था, मेरा दर्द न जाने कोई।
1: हाँ रोशन जी गाना था।
0: कहीं ना कहीं वो ऐसे कंपोजर थे यार, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है ना,
1: जी जी,
0: चाहे अनचाहे आ ही जाता है। हमारे तमाम सीनियर्स जो हमारे संगीत निर्देशक हैं ना,
1: जी जी,
0: क्या उन्होंने काम किया है, मास्टर श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब, मदन साहब, रोशन जी, क्या और वरुण साहब,
1: लोग तो धरोहर बन गए हैं संगीत।
0: हाँ लाजो, और सब अपनी अपनी ऐसी पहचान बना के गए हैं।
1: राग एक ही रहा और अलग अलग कंपोजिशन बनते गए। कमाल,
0: एक भैरवी को ही ले लीजिए ना आप, शंकर जैक्सन, नौशाद साहब,
1: कितने असंख्य गाने बन गए।
0: हाँ, उस्ताद झंडे खान ने तो 12 के 12 गाने चित्रलेख हमें भैरवी बनाए थे।
1: और वही राग मगर सबका स्वरूप अलग, कितनी बड़ी बात है।
0: ये वो लता जी
1: ने आपको बता रहे थे।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले की आवाज में जागते रहो फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी की है तर्ज।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: के जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, एक विशेष सूचना सुन लीजिए। जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उपमहानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गाना। हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
3: मुकेश के गानों में है सादगी।
8: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
3: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
8: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
3: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
8: जाऊं कहां बताए दिल।
3: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
9: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
3: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
10: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूलिए बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म से शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की है तर्ज़।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में सफर करेंगे अपने रेडियो दोस्त विनोद के साथ। शुरुआत करते हैं इस सुविचार से। स्वामी विवेकानंद का कथन है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजार बार ठोकरें खाने के बाद ही होती है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज 23 जुलाई है। 23 जुलाई वर्ष का 204वां दिन है, लीप वर्ष में 205वां दिन है और साल में अभी और 161 दिन शेष हैं। 23 जुलाई के महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालें तो आज ही के दिन सन 2000 को व्यापक घोषणाओं के साथ नागो में हुए समूह 8 का 26वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। श्रोताओं, अब नजर डालते हैं उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा यानी जन्म लिया। इसमें पहला नाम आ रहा है 1947 को जन्मे एल सुब्रमण्यम का, जो प्रतिभाशाली भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1947 को हुआ था, एल सुब्रमण्यम का। और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1947 को मोहन आगाशे का, जो भारतीय रंगमंच के कलाकार, फिल्म अभिनेता और मनोचिकित्सक रहे। मोहन आगाशे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1947 को हुआ था। आज जन्म हुआ था 1934

निर्मला जोशी का, जो मदर टेरेसा के संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख रहीं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1934 को हुआ था, निर्मला जोशी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। बाल गंगाधर तिलक का, जो गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति रहे, बाल गंगाधर तिलक, उनका जन्म आज ही के दिन 1856 को हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद।

तिलक, उनका जन्म आज ही के दिन 1856 को हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का, जो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे। चंद्रशेखर आजाद, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1906 को हुआ था। अब हम नजर डालते हैं आज निधन हुए व्यक्तियों पर, उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए। इसमें नाम आ रहा है आज ही के दिन 2016 को H.H. रजा का, जो भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार रहे H.H. रजा, उनका निधन आज ही के दिन 2016 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था अफगानिस्तान के अंतिम राजा मोहम्मद जहीर शाह का, उनका निधन आज ही के दिन 2007 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद का, उनका भी निधन 1932 को आज ही के दिन हुआ था। लक्ष्मी सहगल, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका रही, लक्ष्मी सहगल जी का निधन भी आज ही के दिन 2012 को हुआ था। और निधन हुआ था आज के दिन 1993 को लक्ष्मण प्रसाद दुबे का, जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1993 को हुआ था। श्रोताओं, आखिर में अब जान लेते हैं आज के अवसर एवं उत्सवों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब आइए सुनते हैं इसी कड़ी में एक खूबसूरत सा गीत उदित नारायण की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, निखिल विनय का संगीत है, फिल्म है आपको पहले भी कहीं देखा है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण को, पहले आपको पहले भी कहीं देखा है फिल्म से। कार्यक्रम को देते हैं गति और नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने पंचायत विकास दिवस के अवसर पर जिले के सभी पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने को कहा। निर्देश देते हुए कहा कि जिले का कोई भी पात्र लाभुक राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए।

प्रखंड की एकमात्र मंगरवलिया पैक्स चुनाव नामांकन के दूसरे दिन एक अध्यक्ष और 16 सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। मंगरवलिया पंचायत पैक्स चुनाव में अध्यक्ष सहित 26 सदस्य ने किया नामांकन। कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महादेव खोह में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन ने कमर कस ली। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र, DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश और SP रोशन कुमार ने मंगलवार को कैमूर पहाड़ी के मध्य स्थित महादेव खो पहुंचकर पूरे स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने बाबा भोलेनाथ का विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की।

रोहतास जिले ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक बड़ा राज्य स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किया है। सदर अस्पताल परिसर स्थित मॉडल अस्पताल में निश्चय मित्रों के सहयोग से एक साथ है 500 टीबी मरीजों के बीच पौष्टिक फूड बास्केट का वितरण किया गया। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में फूड बास्केट बांटने वाला रोहतास बिहार का पहला जिला बन गया है।

शादी के नाम पर ठगी कर लोगों से मोटी रकम वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का फरार चल रहे दो और अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने सोमवार को फर्जी शादी कराने वाले गिरोह की कथित दुल्हन, उनकी बहन, मां और एक बिचौलिया समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान दो आरोपी फरार हो गए। कैमूर जिले में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में पाक्षिक बैठक आयोजन की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने की। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल के सभी अंचलाधिकारियों और सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। नोखा प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को राशन कार्ड निर्माण अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड बनने में तेजी लाने का दिया गया निर्देश।

न्यू कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 कक्षा की बालिकाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 58 प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण स्थानीय जिला पंचायत संसाधन केंद्र में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हमारी लाडो के संस्थापक हेमलता पुनिया ने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण को समाप्ति के अवसर पर उप विकास आयुक्त दिव्या शक्ति ने उम्मीद जताई कि सभी प्रशिक्षक ने बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय की बालिकाओं को बेहतर प्रशिक्षण देंगी। इस मौके पर उप विकास आयुक्त दिव्या शक्ति ने कहा कि इस प्रशिक्षण से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं का स्वर्णिम विकास होगा। अब इसी के साथ सुन लेते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बरसात से। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म है बरसात।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए नजर डालते हैं समाचारों में, मौसम समाचारों पर। आज 23 जुलाई है। आज वर्षा 14 मिलीमीटर होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 80% और न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 45%। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। पवन दिशा 110 डिग्री की तरफ। क्लाउड कवर ओकटा में माने तो 6 रहने की पूर्वानुमान लगाई गई है। आज चेतावनी में आंधी और बिजली, तूफान आदि तेज सतही हवाएं बह सकती है। अब इसी कड़ी में अब सरसरी नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने एक ही तरह की खबर को प्राथमिकता देते हुए अपने अपने तरीके से लिखा है और पहले पन्ने पर सचित्र छापा है। हिंदुस्तान लिखता है, पटना की सड़कों पर सियासी संग्राम। छात्रों के उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज। प्रभात खबर के हवाले से खबर है, दिल्ली के बाद पटना में उबाल। गांधी मैदान से सीएम हाउस तक प्रदर्शन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। ये खबर है प्रभात खबर के हवाले से। इसी खबर को दैनिक जागरण

तरीके से लिखता है, राजधानी में विद्यार्थियों का 6 घंटे तक हंगामा, भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भीड़े। दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर है, आक्रोश का रण क्षेत्र बना पटना, नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को पूरा बिहार सुलग उठा। राजधानी पटना समेत राज्य के हर जिले में भारी बवाल और हंगामा हुआ। पटना में आईसा के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, लोक भवन मार्च किया। छात्रों ने शहर के आधे हिस्से पर करीब 7 घंटे तक कब्जा जमाए रखा। इस खबर को प्राथमिकता दिया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर है, बिहार के सरकारी स्कूलों में जींस पैंट और टी शर्ट पहनने पर लगी रोक। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की जींस पैंट टी शर्ट पहन करके आने पर रोक लगा दी गई है। पुरुष शिक्षक सामान्य पैंट शर्ट और महिला शिक्षक साड़ी सलवार कमीज पहन करके आएंगे। स्कूल में शिक्षक शालीन सौम्य व्यवहार करेंगे। इस दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज, आपस में लड़ाई या तेज आवाज से बात नहीं करेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने भी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अपने जिले में स्कूलों में गरिमामय वातावरण बनाने के लिए काम करें। इसके साथ ही शिक्षकों को भी निर्देशित करें।

दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर है कि अब घर बैठे ऑनलाइन बुक होगा ट्रेन में लगेज। ट्रेन में यात्रा के दौरान भारी भरकम सामान की बुकिंग के लिए अब रेलवे स्टेशन पर लाइन लगाने या पर्सनल ऑफिस में चक्कर काटने से मुक्ति मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था पूरे देश में 31 जुलाई से लागू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम व पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम विंग और IRCT को आपस में तालमेल बनाकर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूरी बदलाव और टेस्टिंग पूरी करने को कहा है।

श्रोताओं, इन्हीं सारी खबरों के साथ दीजिए इजाजत प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

दास सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र थोड़ी देर में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
3: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
5: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम

0: हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं

0: और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: विथ डीप फीलिंग्स इमोशनल इंटेलिजेंस।
2: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
2: और अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म खेलेंगे हम जी जान से। इसे गाया है सोहिल सेन ने। तो आइए सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत।

अभी आपने सुना देशभक्ति संगीत सोहिल सेन की आवाज में। अब हम सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। आप श्रोताओं के द्वारा भेजे गए पत्रों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। पसंद आपकी में पहला गाना सुनते हैं फिल्म आराधना से। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत है। फिल्म है आराधना, सुनना चाहा है आप सबों ने। ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से श्री सुधाकर राज जाघव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाघव, कुमारी संचित वयाल, मोताला से आप हैं कुमार प्रथम देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करड़ा रिसोड़ से कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी सर्वद देशमुख, समस्त राजे जाघव देशमुख और वयाल परिवार। ये श्रोता है इसी गाने के लिए गोगुल चौक गंगा जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। ये श्रोता है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परिमीन, सदफ आरजू, साहिल अरवान, अजफर हामिद, मशकूर आलम और शमा परवीन। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म आशा से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और आनंद बख्शी का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबों ने डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवांग, कौशल्य देवांग, हेमलता देवांग और डिम्पल देवांग। ये श्रोता हैं क्वाथ से शेख जफर हसन, राजकेश रोशन। इसी गाने की ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन अरश बाबू। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आशा से।

कार्यक्रम पसंद आपकी की अगली पेशकश मुकेश कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। संतोष आनंद के इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और फिल्म है शोर, सुनना चाहा है आप सबों ने। ये हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, महेंद्र कपूर तेलंगाना भोंगिर से, आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंगले और आरती जोंगले। वाराणसी यूपी चितईपुर वाराणसी से आप हैं पेट्रोल पंप के सामने से लल्लू प्रसाद चौरसिया, अमन कुमार चौरसिया, अनमोल कुमार चौरसिया, बेबी देवी, चाचा भरत चौरसिया, घर के समस्त चौरसिया परिवार। ये श्रोता है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबों ने सुनना चाहा है शोर फिल्म का ये गाना मुकेश कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी में। आप सुन रहे हैं इस समय अपने पत्रों पर आधारित फिल्मी गाना। श्रोताओं, कार्यक्रम को गति देते

0: के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: स्वागत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी में। आप सुन रहे हैं इस समय अपने पत्रों पर आधारित फिल्मी गाना। श्रोताओं, कार्यक्रम को गति देते हुए सुनते हैं इज्जत फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है साहिर ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। फिल्म है इज्जत। सुनना चाहा है आप सबों ने। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। ये श्रोता है गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, आर के सिंह चौहान। आप हैं अस्मिता रेडियो रिपोर्ट ग्रुप भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता छत्री, मिथिलेश, यदु दशरथ साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी बैदेही जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। ये श्रोता है ग्राम नहौना सासाराम से भरत सिंह, हृदयनाथ सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल सिंह, रविंद्र सिंह डमरू कलाकार और मनोज गुप्ता। न्यू एरिया सासाराम से आप हैं मुन्ना, गुड्डन, आदर्श, ओम, अरुण, नंदिनी, विनय, सुजय, वीणा, अनुज, अंकित और उनके प्यारे दादा दादी। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म इज्जत से।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कोरा कागज से किशोर कुमार की आवाज़ है। एमजे हसमत ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। सुनना चाहा है आप सबों ने। थाना मुड़गढ़ नौका रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सदमा मंसूरी, सदाम मंसूरी, नगमा निशा और लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। ये श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ महेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाकर, राही श्रीमती सरता गोहाकर, प्रिंस एकांश गोहाकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोहाकर, परिणीता गोहाकर, अर्जुन गोहाकर और टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गोहाकर, सुमित गोहाकर, कुमारी ध्वनि गोहाकर और परी। आप हैं छत्तीसगढ़ से दंत रेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरा से आप हैं दुर्गा राम साहू। ये श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। ये श्रोता है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, वरीज वसीम, समीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इसरत अकरम, रूबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूरमहल महसोल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। तो लिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में कोरा कागज फिल्म का ये गीत।

0: होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में।
1: हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और समस्या के अस्थायी समाधान के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। विधानसभा से बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित। सोशल मीडिया के दुरुपयोग और पेपर लीक जैसे अपराध विधेयक के दायरे में लाए गए। राज्य सरकार ने कहा, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप एरिया में जमीन बिक्री के लिए आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर रैयतों को भुगतान कर दिया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए।

0: ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। श्री नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। संशोधित कानून के तहत संगठित अपराध, भूमि माफिया, पेपर लीक गिरोह, विस्फोटक पदार्थों के दुरुपयोग, सरकारी और वन संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों को भी इसके दायरे में लाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बदलते समय में साइबर अपराध, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून को और सशक्त बनाया गया है। ऐसे मामलों में 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकेगी।
2: महोदय, जितना तरह का तरीका बदल गया है अपराध का, अभी का जो कानून था उसमें सोशल मीडिया के इस तरह के गलत कृत्यों को रोकने का या नियंत्रित करने का प्रावधान नहीं था, वो इसमें किया जा रहा है। तो आप जो चाह रहे हैं वही तो हम लोग कर रहे हैं। महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है।
1: श्री चौधरी ने बताया कि विधेयक में प्रश्न पत्र लीक को भी संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में विकसित किए जा रहे 12 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में यदि कोई रैयत अपनी जमीन बेचना चाहता है तो आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर राज्य आवास बोर्ड की ओर से भुगतान कर दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधान परिषद में बताया कि इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि योजना में किसानों से केवल स्वेच्छा से जमीन ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 750 किसान स्वेच्छा से जमीन देने की सहमति दे चुके हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।
3: इस बिल के माध्यम से एक अथॉरिटी हम बनाने जा रहे हैं जो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। क्योंकि जब हम शहर का विस्तार कर रहे हैं, आप अवगत हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप पर राज्य सरकार काम कर रही है, तो बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज भी आते हैं। तो उन इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज को टाइमली रिजॉल्व करने के लिए मुख्य सचिव की को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और मेरा विश्वास है कि इस अथॉरिटी के बनने से जो बिहार के शहरीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसको हम रफ्तार दे सकेंगे। साथ ही साथ जो विषय आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, इस अथॉरिटी के माध्यम से हम इश्यू को भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे।
1: राजद के कुमार सर्वजीत ने राज्य सरकार से स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। विधानसभा में प्रदूषित साग सब्जियों के सेवन से होने वाली बीमारियों और उसके इलाज पर होने वाले खर्च की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की मांग की।
4: एक ऐसा कोई सब्जी बिहार में नहीं है महोदय, जिसमें बड़े पैमाने पे दवाई का यूज नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर निगरानी समिति अगर होती है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस फल में इतना ही दवाई डालना है। माननीय मंत्री जी सक्षम हैं, और अगर ये जिद बांध लेंगे कि बिहार में सब्जी उत्पादन में ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पे कंट्रोल होगा।
1: इसके जवाब में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को एक तिहाई भूमि पर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की भी स्थापना करेगी। बिहार ने केंद्र सरकार से 7,900 करोड़ रुपए के विशेष शिक्षा पैकेज की मांग की है। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह मांग रखी। शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने कहा कि यह पैकेज विद्यालयी आधारभूत संरचना, डिजिटल लर्निंग

0: आकांक्षी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और संस्कृत शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। शुरुआती दौर से ही रेडियो देश में आम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी वास्तव में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतरते हुए जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में तत्पर है। प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस अवसर पर कहा कि यह दिन भारतीय रेडियो के इतिहास में उसके गौरवशाली प्रसारण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के मिंकोपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला के अस्थायी परिसर का शिलान्यास करेंगे। समारोह में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजधानी पटना में कल हुए विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल थे। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदर्शनकारियों के हमले में कई पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 23 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: रोहतास के पीयूष राज का चयन भारतीय अंडर 20 एथलेटिक्स टीम में किया गया है। यह टीम 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेगी। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने 2 सिगरेट फैक्ट्रियों में छापेमारी कर लगभग 1,94,00,000 रुपए मूल्य की सिगरेट जब्त की है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कुटनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मूल्य की मशीनें और लगभग 12,00,000 रुपए मूल्य की सिगरेट जब्त की गयी। पटना पुलिस ने पटना उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय और सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। निगरानी की अदालत ने नवादा के रो अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी भोला पासवान को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के रिहायशी इलाके में एक बाघ देखा गया। वन विभाग की टीम के अनुसार यह बाघ वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी है।

है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के राजकीय मध्य विद्यालय मिर्चवा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 50 से अधिक बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत पर सभी बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर बताई गई है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पटना की सड़कों पर सियासी संग्राम, सदाकत आश्रम के बाहर भाजपा का मार्च, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़े। दैनिक जागरण ने लिखा है, नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के हमलों के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच बातचीत का निकाला जा रहा है रास्ता। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक और बिहार नगर विकास विधेयक को मंजूरी, उद्योगों को सिंगल विंडो से मिलेगी मंजूरी। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विधानसभा में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, राज्य में जहां सुखाड़ के हालात वहां डीजल अनुदान मिलेगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 161 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत मिली सरकारी नौकरी। आज अखबार लिखता है, सम्राट के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का 100वां दिन आज, सुशासन सुधार और विकास पर मुख्य रूप से रहा फोकस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। विधानसभा से बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और पेपर लीक जैसे अपराध विधेयक के दायरे में लाए गए। राज्य सरकार ने कहा, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप एरिया में जमीन बिक्री के लिए आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर रैयतों को भुगतान कर दिया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यार वोट देना तो है, लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
3: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
1: मतलब जानकारी भी, मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
3: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, कोई मतदाता ना छूटे।
4: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। नज़र डालते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे सुबह के 9:30 पर और हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 10:00। सुबह 10:05 पर हिंदी कार्यक्रम साहित्यिकी कार्यक्रम में सुनेंगे रोहतास कैमूर के दर्शनीय स्थल, वार्ताकार होंगे प्रसून कुमार। कहानी अज्ञातवास सुनेंगे, कहानीकार होंगे संजीव कुमार आलोक। और सुबह के 10:30 पर भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी सुन पाएंगे। भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार सुनेंगे सुबह के 10:45 पर। पूर्वाहन 11:00 विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनेंगे, जहां से सुनेंगे रंग तरंग यादों की महफिल, विविध भारती की गीतमाला। आप सबों की सेवा में हाजिर होंगे शाम 5:10 पर कार्यक्रम वंदन के साथ। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी का समय होगा शाम 5:30 पर और भोजपुरी लोक गीतों के कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:00 से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन शाम 6:05 पर और किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी सुन पाएंगे शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत का समय होगा शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनेंगे शाम 7:00 से। गुड इवनिंग रोहतास संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम को सुनेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार जिले की हलचल के लिए आकाशवाणी के पटना चलेंगे शाम 7:25 पर। विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के पटना केंद्र से शाम 7:50 पर और शाम 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। शाम 8:15 पर ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सुनेंगे और शाम 8:30 पर विधि एवं न्याय

मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, इसका एपिसोड नंबर 1 सुन पाएंगे शाम 8:30 पर। समाचार संध्या का समय होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 8:45 पर, और रात्रि 9 बजे भोजपुरी लोकधारा सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा में रात्रि 9 बजे से। गजलों की महफिल सजाएंगे रात्रि 9:15 पर, और विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। हम इसे समापन तक रिले करेंगे। समय रहते हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार सुनेंगे रात्रि 10:15 पर, और 10:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने। अगले दिन के कार्यक्रम विवरण सुन पाएंगे रात्रि 10:55 पर, और रोजाना की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी समाचार रात्रि के 11 बजे से। सभा का समापन रात्रि 11:10 पर। ये रहा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम का पहला गाना मुकेश कुमार की आवाज में, सामन कुमार के गीत हैं, उषा खाना का संगीत है, फिल्म है सबक।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आन की कसम से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने इसे गाया है। समीर के बोल है, नदीम शोन का संगीत है। फिल्म है आन की कसम।

अभी आपने सुना सुनिधि चौहान को फिल्म फरेब में, सैयद कादरी के लिखे गीत को अनु मलिक ने संगीत दिया था। अब हम कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और फिल्म है जन्म जन्म।

मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल के गाए इसी गाना के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए हाय सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या?

0: हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई, प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई

0: थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
1: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
0: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
2: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हाथी घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
3: बोल दो बापू?
2: बोल दे बेटा।
3: बाप

0: मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
1: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हाथी घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
2: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।
2: बाप

0: भैया
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

गया कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: ஆஷா பத்கம்மா பத்கம்மா
1: ஏன் கண்ணா ஏன் கண்ணா
0: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: பத்கம்மா
3: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
4: वनकम जी,
1: ओ पहुंच जाइए ना।
4: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
1: क्या है?
4: खिड़की बंद करना जी।
1: क्यों?
4: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
1: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
4: अयो पहले बोला ना ऐसा बात। बाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
4: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना।
5: चल
4: देवी तुम बदाना
3: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
6: यह कच्चा

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗಳೇ.

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
1: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रो बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
3: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार।

0: तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और अब आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की

0: कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगों के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। यह घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री एलिए बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोनास योनोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं साहित्यिकी कार्यक्रम में हिंदी कार्यक्रम। वार्ता का विषय है रोहतास कैमूर के दर्शनीय स्थल। वार्ताकार

0: प्रसून कुमार मिश्र। आइए सुनते हैं प्रसून कुमार मिश्र से एक वार्ता रोहतास कैमूर के दर्शनीय स्थल पर।
1: सोन दुर्गावती एवं कर्मनाशा के उपजाऊ मैदानों तथा कैमूर पहाड़ी श्रृंखला की सुरम्य वादियों से आवृत रोहतास कैमूर का क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से आकर्षण का केंद्र रहा है। कैमूर पहाड़ियों एवं सोन घाटी में काफी संख्या में आदि मानव के निवास स्थल पाए गए हैं, जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है। इन शैलाश्रयों गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पाए जाते हैं, जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है। इनकी उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जल, अन्न, वन्य प्राणी तथा अन्य जीवनोपयोगी साधनों की प्रचुरता के कारण यह क्षेत्र हजारों वर्ष पूर्व से ही मनुष्य को यहां आने और बसने के लिए प्रेरित करता रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य इतिहास, पुरातत्व, धर्म एवं संस्कृति के अनूठे प्रतीकों को संजोए रोहतास कैमूर की धरती आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचती है। यहां ईसा पूर्व अंकित सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, तो 2000 वर्ष पूर्व से निरंतर पूजी जा रही मां मुंडेश्वरी का अद्भुत मंदिर भी है। भस्मासुर से महादेव को बचाने के लिए भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार लेने का स्थान मोहनिया और महादेव के गुप्त रूप से छिपने का स्थान गुप्तेश्वर महादेव गुफा मंदिर भी है। वासनाओं से मुक्त होकर ईश्वर की ओर प्रेरित होने की अवधारणा को मूर्ति शिल्प में संजोए रामगढ़ के निकट स्थित बैजनाथ मंदिर है और है भगवती ताराचंडी का प्राचीन शक्तिपीठ, जहां मां को धारण कर महादेव के तांडव के समय भगवती की आंख गिरी थी। अद्भुत शिल्प एवं वास्तु की गवाही देते दुर्भेद्य रोहतासगढ़ और शेरगढ़ के किले, जहां यहां के मूल निवासियों की शक्ति एवं कुशलता के कीर्ति स्तंभ हैं, वहीं प्रसिद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी, उसके पुत्र इस्लाम शाह एवं पिता हसन शाह सूर के मकबरे भारतीय अफगान वास्तु शैली की अन्यतम धरोहर हैं। चैनपुर के निकट स्थित बख्तियार खां का मकबरा इस वास्तु शैली का एक अन्य उत्कृष्ट प्रतीक है। इसके अतिरिक्त कैमूर श्रृंखला की मनोरम प्राकृतिक सुषमा के मध्य स्थित तेल्हार कुंड, करकटगढ़, धुआं कुंड, मांझर कुंड, हथियादह, सीता कुंड आदि सुंदर जलप्रपात पर्यटकों को असीम आनंद एवं शांति की अद्भुत अनुभूति कराते हैं। आइए अब हम सब रोहतास एवं कैमूर में स्थित इन आकर्षक स्थलों की यात्रा पर चलें। मुगल सराय गया रेलखंड के भभुआ रोड स्टेशन पर उतरने के साथ ही महसूस होता है कि हमने किसी विशिष्ट धरती पर पांव रख दिए हैं, जहां अद्भुत रोमांच भी है और अनिर्वचनीय शांति भी। स्टेशन परिसर से बाहर निकलते ही प्रसिद्ध सती माता के मंदिर के दर्शन होते हैं। स्टेशन के सटे पूर्व स्थित यह वही स्थान है जहां मान्यता है कि शिव को भस्मासुर से बचाने के लिए विष्णु ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया था। आज भी इस कस्बे को मोहनिया कहा जाता है। इस स्थान पर हजारों श्रद्धालु आकर मां भगवती से अपने मनोरथ सफल होने की मनोती मांगते हैं। खासकर कुंवारी कन्याएं सुंदर वर पाने की मनोती मांगती हैं और माता उन्हें पूर्ण करती हैं। मोहनिया से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय कर हम मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड की प्रवरा पहाड़ी पर स्थित भगवती का प्राचीन मंदिर सहस्त्राब्दियों से सात्विक श्रद्धा एवं ज्ञान का केंद्र रहा है। पहाड़ी पर घुमावदार सड़क, छायादार सीढ़ियों पर वाहन अथवा पैदल चढ़कर हम भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं। अष्टकोणी आधार पर बने मंदिर की बाहरी दीवारों एवं चारों दरवाजों पर तत्कालीन शिल्पकारों की दक्षता के प्रमाण देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों की सुंदर समानुपातिक मूर्तियों और पत्थर पर फूल पत्तियों की कढ़ाई है। पत्थर पर जालीदार

नक्काशी का काम अत्यंत सुंदर है। मंदिर के गर्भगृह के मध्य में पंचमुख शिवलिंग विराजमान है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह प्रातः मध्याह्न एवं सायंकाल में सूर्य की स्थिति के अनुसार रंग परिवर्तन करता है। पूर्वी गवाक्ष में मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा उत्तराभिमुखी स्थित है। काले पत्थर की यह दुर्लभ प्रतिमा भैंसे पर सवार है। लगभग 5 लाख देशी विदेशी श्रद्धालु तथा शोधार्थी इस विग्रह के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यहां पहुंचते हैं। यहां की रक्तहीन बलि पूरे भारत में अनूठी एवं अत्यंत चमत्कारिक है। अपनी मनोती पूरी होने पर श्रद्धालु यहां बकरे को बलि देने के लिए लाते हैं। बकरे को मां की मूर्ति के समीप लाकर मंत्रपूत अक्षत तथा फूल छिड़कते हैं और वह शांत होकर सो जाता है। पुनः पुचारी द्वारा मंत्रोच्चार एवं अक्षत फूल छिड़कने पर बकरा स्वयं उठकर डगमगाते कदमों से मंदिर के दक्षिण द्वार से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार बलि प्रक्रिया पूरी होती है। यहां किसी प्रकार की हिंसा एवं वाम मार्गी तंत्र साधना पूरी तरह वर्जित है। मंदिर क्षेत्र से प्राप्त महान श्रीलंकाई सम्राट महाराजु दुत्थगामनी, जिनका राज्यकाल 101 से 77 ईसा पूर्व था, की राजमुद्रा एवं मुंडेश्वरी शिलालेख की तिथि इतिहासकारों द्वारा 108 ईस्वी निर्धारित किए जाने के बाद यह मंदिर भारत का प्राचीनतम हिंदू मंदिर माना गया है, जहां 2000 वर्ष से अधिक समय से पूजा साधना लगातार जारी है। यही कारण है कि काफी संख्या में विदेशी शोधार्थियों का इस मंदिर पर आगमन हो रहा है, जो 2000 वर्षों से सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिल्प एवं मानव विकास के क्रमिक अध्ययन हेतु इस स्थान को अत्यंत उपयुक्त मानने लगे हैं। मुंडेश्वरी मंदिर से थोड़ी दूर पर मदुरना में मां चंडेश्वरी का मंदिर है। मान्यता है कि दुर्गा ने यही चंड नामक दैत्य का वध किया था। यहीं पर बख्तियार खिलजी का विख्यात मकबरा है, जो सासाराम स्थित हसन शाह के मकबरे की वास्तुशैली से मेल खाता है। सासाराम में एक विशाल तालाब के मध्य स्थित शेर शाह का मकबरा वास्तु योजना एवं शिल्पकारी का अनूठा संगम है। पानी के बीच 9 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित 123 फीट ऊंचे गुंबद वाला यह मकबरा अपनी विशालता और भव्यता से दर्शकों का मन मोह लेता है। अफगान सम्राट शेर शाह के महान व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता यह निर्माण मध्य एशिया, खासकर समरकंद की प्रसिद्ध नीली टाइल्स की आंतरिक सज्जा के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। शेर शाह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी सलीम शाह ने शेर शाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त सन 1545 को इसका निर्माण पूरा किया था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इमारत है। शेर शाह के मकबरे से कुछ दूरी पर स्थित उनके पिता हसन शाह का मकबरा एवं अर्धनिर्मित इस्लाम शाह का मकबरा भी भव्य एवं दर्शनीय है। सासाराम से मात्र 5 किलोमीटर दक्षिण कैमूर पहाड़ी पर मां तारा चंडी का भव्य मंदिर है। मान्यता है कि ये स्थानीय आदिवासी शासकों की कुल देवी थी। लोक मान्यता यह भी है कि सासाराम प्रसिद्ध वैदिक चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्रार्जुन की राजधानी थी। मां तारा चंडी के आशीर्वाद से भगवान परशुराम ने इस अत्याचारी शासक का वध किया था। बगल में परशुराम की गुफा एवं चंदन पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख है, किंतु संरक्षण के अभाव में शिलालेख नष्ट प्राय है। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के दक्षिणी पहाड़ियों में गुप्तेश्वर महादेव का प्रसिद्ध गुफा मंदिर है। मान्यता है कि भगवान शिव भस्मासुर से रक्षा के लिए यहां छिपे थे। गुफा में स्थित चूना पत्थर निर्मित प्राकृतिक शिवलिंग एवं 5 पांडवों के दर्शन हेतु यहां काफी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। गुफा मंदिर जाने के मार्ग में भुड़कुड़ा गांव के निकट आदिवासी राजाओं द्वारा निर्मित किला है। इसमें भूमिगत कमरों में सुंदर नक्काशी एवं रंग संयोजन का काम मिलता है। शेर शाह द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद इसका नाम शेरगढ़ हो गया। अपने आप में अद्भुत यह किला संरक्षण के अभाव में ध्वस्त हो चला है, लेकिन अभी भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, खासकर उनके लिए जो जनजातियों के निर्माण कौशल और उनके इतिहास में रुचि रखते हैं।
डिहरी अकबरपुर

0: मार्ग के किनारे दुर्गम खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की दुर्लभ धरोहर है। लोक मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी सम्राट हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व द्वारा निर्मित यह किला प्रागैतिहासिक काल से साम्राज्यों के उदय और विनाश का साक्षी रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थान पर निर्मित इस किले के माध्यम से आर्यावर्त के शासक दक्षिण और पूर्व के आक्रमणकारियों पर नजर रखते थे। यह गंगा और सोन के उपजाऊ मैदानों तथा राजगृह पटना तथा वाराणसी की राजधानियों का प्रहरी रहा है। इसकी सैनिक उपयोगिता मुगल काल तक कायम रही। आदिवासी राजा हरे कृष्ण से शेर शाह द्वारा सन 1539 में छीने जाने के बाद यह बंगाल बिहार की राजधानी बन गया था। शेर शाह, शाहजहां, शाह शुजा, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा 1857 विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह को शरण देने वाले इस दुर्जेय किले का अनूठा इतिहास है। सम्राट अकबर द्वारा नियुक्त बंगाल बिहार के शासक मान सिंह ने इस किले का सुदृढ़ीकरण करा, कई इमारतें बनवाई जिनमें आईना महल और तख्तपात शाही आज भी दर्शनीय हैं। किला क्षेत्र में मौजूद जामा मस्जिद, हफ्स खां एवं शफी सुल्तान के मकबरे, रोहिताश्व, हरिश्चंद्र तथा देवी मां के मंदिर भी दर्शनीय हैं। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। रोहतास गढ़ किला उरांव तथा खरवार आदिवासियों का मूल स्थान है, जहां से वे पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर बसे। यहां प्रतिवर्ष कर्मा पर्व के समय पूरे देश से आदिवासी आते हैं और अपने पूर्वजों के मूल स्थान पर स्थित 5 कर्म वृक्षों की पूजा करते हैं। वे यहां की मिट्टी एवं कर्म वृक्ष के पत्तों को अत्यंत पवित्र मान अपने साथ ले जाते हैं। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने मुंडेश्वरी मंदिर एवं रोहतासगढ़ के संरक्षण, यहां रोपवे के निर्माण एवं स्तरीय पर्यटन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रोहतास कैमूर को बुद्ध सर्किट से जोड़ने के प्रस्ताव भी मांगे हैं। वह दिन दूर नहीं जब यह क्षेत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का मुख्य आकर्षण बनेगा। कैमूर
1: अभी आपने सुना हिंदी वार्ता रोहतास कैमूर का दर्शनीय स्थल। वार्ताकार थे प्रसून कुमार। श्रोताओं एक संदेश के बाद सुनेंगे अज्ञातवास कहानीकार संजीव कुमार आलोक से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मुझे अपनी नई पड़ोसिन से मिलकर खुशी हुई। वह देखने में जैसी सुंदर थी वैसी ही दिल की अच्छी थी। किसी चीज की जरूरत हो कभी इनकार नहीं करती। अगर उसे पता चलता कि मैं किसी चीज के कारण परेशान हूँ तो वह खुद भेज देती। मेरा उससे खूब मेल जोल बढ़ गया। एक दिन वह अचानक बोली, बहना मैं कैसी लगती हूँ। मैं उसके इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो उठी, फिर हंसकर बोली, क्यों तुम में क्या कमी है, तुम तो काफी खूबसूरत हो, और क्या चाहिए। तुम तो मजाक करने लगी, सच बताओ इसमें झूठ क्या है, तुम तो किसी पर बिजली गिरा सकती हो। लेकिन इस रूप का क्या फायदा, अगर मैं काली कलूटी और बदसूरत ही होती और मेरा आदमी मुझे स्नेह करता होता तो मुझे खुशी होती। उसका स्वर निराशा से भरा था। कुछ गड़बड़ है क्या, मैं संकेतात्मक

पर मैं बोले, कुछ गड़बड़ नहीं है। वे अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्रों में से एक हैं। पिताजी उन्हें बचपन से ब्रह्मचर्य की महिमा समझाते आ रहे हैं। अब भला तुम ही सोचो वो क्या कर सकते हैं। अब पिताजी ने उन्हें दाम्पत्य के कर्तव्य समझाया है तो अब जाकर उनकी बात मानकर महीने में यदा केदा मेरे पास आते हैं। इसमें उनके प्यार का उफान नहीं होता, शायद कर्तव्य पालन की मजबूरी होती है। मैं उसे समझाने लगे, तुम उनके सामने इस ढंग से रहो कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखो, उनकी पसंद के कपड़े पहनो, उनकी पसंद का खाना बनाओ ताकि वे तुम्हें पसंद करें। उसने बीच में ही टोक कर ऊंचे स्वर में कहा, अरे बहन, मैंने सब कर लिया और क्या करना बाकी रह गया है। ओझा जी का वाने का वक्त हो गया है, अब मैं चलती हूँ, कहकर वह चली गई। मैं उससे अपनी सापेक्षता के संबंध में सोचती रही। मैं अब तक गृहस्थी में अपने खटके रहने पर खींचती रहती थी और बहुत कुछ पति की उपेक्षा भी करती थी। अब मुझे अपनी खुशकिस्मती पर गर्व होने लगा। इसी समय मेरे पति दफ्तर से आ गए। मैं उन पर अपना दिल मुस्कुराहट के रूप में उढ़ेल दिया। वे बोले, आज बहुत खुश हो, क्या बात है। बस यूं ही कहकर मैं उत्साह से चाय बनाने चली गई। औरत के लिए आदमी का स्नेह केवल वेदना है। जब वह स्नेह नहीं करता तो औरत उसके लिए तड़पती है। जब वह स्नेह करता है तब वह खुशी खुशी तड़पता है। यही एक फर्क है। तड़पना ही औरत की नियति है। मैं अपने पति का खूब ध्यान रखने लगी। अपनी पड़ोसिन रानी को लेकर एक भय मुझ में समा गया था। दूसरी तरह हालात यह थी कि मेरी पड़ोसिन रानी में अद्भुत साहस आ गया था। उसका स्वभाव उग्र हो गया था। वह घर का कोई काम न करती, चाहे जहां आती जाती आए दिन पति को लेकर दो चार खरी खोटी सुना देती। उसकी ऊंची आवाज मुझे घर सुनाई देती रहती। पति जिस टोन में बोलते उससे ऊंचा टोन उसका होता। वे धीरे धीरे बोलने को कहते तो वह और तेज बोलती। पड़ोसियों से भी वह लड़ने लगे थे। कई दिन गुजर गए। रात की 11 बजे होंगे कि दरवाजे पर कॉल बेल की घंटी बजी। मैं मन ही मन कुड़ते हुए दरवाजा खोला, देखा तो रानी सामने खड़ी थी, दीनता की मूर्ति सी, मुंह लटका हुआ, आंखें उदास, उनमें से बहे हुए आंसुओं की हल्की पर धोने के बावजूद गालों पर झलक रही थी। उसे इस दशा में देखकर मुझसे नहीं रहा गया। बोली, क्या हुआ बहन, इस वक्त कैसे आना हुआ। बे अब तक नहीं लौटे हैं, उसने बड़ी मायूसी से कहा। मैं सोचने लगी कि यह बड़ी विचित्र औरत है, जब तक पे रहते हैं उनसे लड़ती है और उनके चले जाने पर आंसू बहा रही। प्रकट में सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, कोई बातचीत तो नहीं हुई थी। वह तो रोज होती है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चले जाए। कहीं कोई काम आ गया हो। नहीं बहन, मैं उन्हें खूब जानती हूँ, उनको इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। मैंने ऊंचे स्वर में अपने पति को जगाते हुए कहा, अजी सुनते हो, राजन जी अब तक नहीं लौटे। मेरे पति शायद मेरी पुकार का ही इंतजार कर रहे थे, झट कपड़े बदल कर आ गए। इधर कुछ दिनों से उनकी रुचि रानी में बढ़ गई थी। एक संवेदनापूर्ण निगाह रानी पर डालकर बोले, रानी जी को यहीं बैठाओ, मैं राजन जी को देखता हूँ। वे अपनी गाड़ी निकालकर चले गए। जिस समय वे लौटे 1 बज गया था। उनकी चाल सुस्त थी और मुंह लटका हुआ। बोले, सब जगह राजन जी का पता लगाया, वे नहीं मिले। दफ्तर से वे 5 बजे ही निकल गए थे। पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। रानी जी आप चिंता ना करें, सवेरे मैं राजन जी को जरूर खोज

का लूंगा, आखिर जाएंगे कहाँ। रानी जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं उसकी पीठ सहलाने लगी। राजन जी का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं लगा। रानी अपने घर में थी, वह बिना कुछ खाए पिए उदास बैठी रही। मुझे तो घर का काम करना था। मेरे पति उसके पास जाकर दिलासा देते रहे। वे मुझसे रानी का ध्यान रखने को कहकर दफ्तर चले गए। वहां से लौटते हुए उन्होंने फल मिठाई आदि बहुत सा सामान खरीदा और सीधे रानी के पास पहुंचे। रानी अकेली बैठी बेसुर रही थी। रोते रोते उसकी आंखें फूल उठी थी। मेरे बहुत समझाने पर भी उसने मुंह में कुछ न रखा था। इस उदासी में भी उसके दैवी सौंदर्य की आभा फूट रही थी। रानी संकुचित होकर बोली, मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने हमेशा आप लोगों को तकलीफ दी है। आप इस वक्त दफ्तर से थके लौटे हैं, घर जाकर फ्रेश हो लीजिए। क्या यह मेरा घर नहीं है? यह मैंने कब कहा राजन जी? मैं तो बिना आपके खाए पिए यहां से नहीं जाऊंगा। अच्छा, खा लूंगी, थोड़ा सा निकाल कर बाकी लेते जाइए। नहीं, आपको मेरे सामने ही खाना होगा। आप तो बेकार ही हट कर रहे हैं। क्या यह अच्छा लगता है कि मैं अकेली खाने लगूं? यह किसने कहा कि आप अकेली खाएं? मैं भी आपके साथ खाऊंगा। आपके लिए चाय बनाऊं? जरूर, दो कप। गर्म चाय की प्यालियों की भाप मेरे पति और रानी के मुंह से टकराई और उसने दोनों के हृदय की संवेदनशीलता को पिघला दिया। यह मैं रानी की खिड़की से देख सुन रही थी। इससे मेरे मन को बड़ा संतोष हुआ क्योंकि मैं रानी के लिए चिंतित थी। दूसरे दिन मैंने अपने पति से कहा, बेचारी बहुत दुखी है, पता नहीं राजन जी कैसे आदमी हैं जो ऐसी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर चले गए हैं। वे बताए कि राजन जी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गए हैं। रानी जी हम पर ही आश्रित हैं, उनका अब हमें ही ध्यान रखना होगा। इसी तरह दिन बीतते गए। मेरे पति ज्यादा से ज्यादा रानी के निकट होते चले गए। वे रोजाना सवेरे शाम उसका हाल पूछते, आवश्यक सामान पहुंचा देते। काफी रात हो गए होने तक रानी के पास रहते, फिल्म दिखाने ले जाते या गाड़ी से घुमा लाते। उनके लिए जैसे मैं ही अस्तित्व विहीन हो गई थी। शुरू में जब मेरे पति ने मेरी इच्छा के अनुरूप रानी का ध्यान रखा तो मुझे खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे यह खुशी क्षोभ और आक्रोश में बदल गई। रानी के प्रति अपने पति के खिंचाव को मैं बर्दाश्त न कर सकी। उनका जब देखो तब रानी के पास रहना, घंटों होने वाली बातें, हंसी मजाक सब मुझे अखरने लगा। मैंने मार्क दिया कि रानी के लिए मेरे पति के मन में लालसा का उत्कट निचर झरने लगा था, जिसके छींटे लाख छिपाने पर भी तैर जाते थे। मेरे प्रति उनका उपेक्षा भाव और स्पष्ट हो गया था। मैं एक अजीब दुविधा में थी, अपने पति से स्पष्ट कुछ कह नहीं सकती थी। इसमें मेरा क्या गलती थी? होने के अलावा रानी के प्रति कोमल भाव भी बाधक था। जिस नारी के दुख से मैं दुखी थी वही मेरे दुख का कारण बन रही थी। उस दिन मेरे रोए रोए जल उठे। रात के 10 बज रहे थे। रानी के घर में लाइट जल रही थी लेकिन किवाड़ अंदर से बंद थे। मेरे पति अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने का बहाना करके गए थे। रानी के घर लाइट देखकर मैं उसके घर पहुंची। किवाड़ खटखटाने पर रानी के साथ मेरे पति भी दरवाजे पर आ गए। उनके मुख पर एक निलज्जा हंसी तैर गई। वे मुझसे बोले, चलो तुम आ ही गई हो तो और थोड़ा बैठ लेते हैं। फिल्म देखकर लौटा तो सोचा कि रानी जी का हाल चाल ले लूं। मैं अभी ही आ रहा था कि तुम यहाँ आ गई। अपने पति के इस सफेद झूठ पर मैं तिलमिला उठी, परंतु मैं आवश थी, कुछ कह नहीं सकती थी। मैं सोचने लगी, मुझसे अच्छी तो रानी है जिसका पति प्यार का नाटक करके दूसरी जगह मुंह तो नहीं मारता। उसका पति चला गया है, शायद लौट भी आएगा।
रानी ने बताया था कि

0: वे कई बार इसी तरह अज्ञात वास पर चले जाते हैं, जब इच्छा होती है तब लौट आते हैं, परंतु मेरा पति मेरे पास रहते हुए भी दूर चला गया है, जो शायद कभी नहीं लौटेगा।
1: अभी आपने सुना हिंदी कार्यक्रम में कहानी अज्ञातवास। कहानीकार थे संजीव कुमार आलोक। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत शारदा सिन्हा के स्वर में है।

कार्यक्रम लोक माधुरी की अगली पेशकश भरत शर्मा ब्यास के आवाज में चंद्रभूषण तिवारी ने इस गीत को लिखा है और पारंपरिक संगीत है। एल्बम है आधी आधी रतिया के।

अचके में उनका माथ से।

भरत शर्मा व्यास के गाए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों के साथ ही कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम का पहला गाना सुनेंगे राजेश तिवारी रतन के आवाज में। एल्बम है निमिया के डाढ़ मैया। इस पारंपरिक गीत को संजय मिश्रा पप्पू ने संगीत दिया है। तो आइए सुनते हैं एक देवी गीत राजेश तिवारी रतन की आवाज में।

कार्यक्रम रसधार की अगली और आखिरी पेशकश तनु प्रियंका की आवाज में, बिट्टू विद्यार्थी के बोल हैं, अंजनी सिंह का संगीत है और एल्बम है राम जी के रचल विधान।

0: तनु प्रियंका के गाए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बजे हैं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को थोड़ी देर में।
1: ये है विविध भारती।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, अभी आपने बैक टू बैक दो कलाम सुने। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में कलाम उम्मीद होगी कोई, जिसे हमने लिया था दिल पड़ोसी है एल्बम से। इसके ठीक पहले आपने सुना शायराना एल्बम से मिर्जा गालिब का कलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम यारों रब से दुआ करो, इसका कलाम अखिल सचदेव ने गाया है इसे। रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने लिखा, मीत ब्रदर्स और निखिल विनय की तर्ज है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। हमारी अगली पेशकश शुभा मुदगल की आवाज में एल्बम अली मोरे अंगना से। शुभा मुदगल की आवाज है और गीत भी उन्हीं की रचना है और संगीत है जवाहर वत्तल का।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, एक विशेष सूचना। जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए शोभा गोटू की आवाज में ये रचना। इसे लिया है हमने एल्बम द जीनियस ऑफ शोभा गोटू से और इसे संगीतबद्ध भी किया है शोभा गोटू ने ही। एक पारंपरिक रचना है

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं। स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए रूना लैला की आवाज में बज़्मे लैला एल्बम का ये कलाम। प्रवीण शाकिर ने लिखा, इसे निसार बज्मी ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।
1: रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेता बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ

0: अन्याय न।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि यह सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: गीता दत्त को सुनिए। फिल्म सुजाता में गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।
1: नींद भरे पंखल

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कैफी आजमी की गीत रचना एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है, आवाज गीता दत्त की। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: डार्लिंग।
1: और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के। रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार OP नैयर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप लोग।
1: अरे भाई, आज तो हम किसी विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो अच्छे ही होंगे और तैयार भी हैं आप, है ना?
0: हाँ, आज सुरीला सफर एक ऐसा सफर होगा जो एक ऐतिहासिक यात्रा बन जाएगा।

है ना। आज इस सफर में हम होंगे, आप होंगे और साथ में होगा हमारा प्यारा सा साथी, हमारा रेडियो, हमारा ट्रांजिस्टर या हमारा मोबाइल, जिस पर न्यूज ऑन AIR ऐप हम डाउनलोड कर विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे, है ना। एक ऐसा साथी जो हमारे लिए देश विदेश की ताजा खबर, मौसम की जानकारियां, सरकारी नीतियां, संगीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और भी न जाने क्या क्या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाता है। तो आज सुरीला सफर हमारे इस प्यारे साथी के साथ हम पूरा करने वाले हैं। सचमुच आज का ये सफर में हम होंगे, आप होंगे और होगा हमारा प्यारा साथी, हमारा रेडियो। तो बताइए, तैयार है ना आप हमारे साथ चलने के लिए? मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार हैं। आज का टेक्स्ट भी हम आपको पढ़ देते हैं ताकि ये सफर और आसान हो जाए। और इस पूरे सफर के दौरान आज हम इन्हीं बातों पर अपना और आपका ध्यान रखेंगे, ध्यान केंद्रित भी करेंगे। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज कुछ ऐसे गीत जिन्हें सुनकर हम ठिटक गए हों। आप भी बता सकते हैं वो कौन से गीत थे जिन्हें सुनकर आप ठिटक गए हमेशा और आज भी ठिटक जाते हैं, या सिहर जाते हैं, या सहम जाते हैं, या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या आप खिलखिला उठते हैं, या आप मजा महसूस करते हैं, बहुत ही प्यारापन महसूस करते हैं किसी गीत को सुनकर। उन सभी गीतों का जिक्र कम से कम शब्दों में आप कर सकते हैं। हाँ, वो गीत जो हमारी जिंदगी से जुड़ गए हो। तो आज सुरीला सफर भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के गानों और गायकों का सफर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम आज बात करने वाले हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की क्या भूमिका रही, आपके जीवन में रेडियो क्या महत्व रखता है, रेडियो का महत्व क्या है, रेडियो का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विकास में रेडियो प्रसारण की भूमिका क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी ने ऐतिहासिक और अतुल्य योगदान दिया है, क्या है वो योगदान, बस आज सुरीला सफर इन्हीं खास बातों पर। तो आज के शब्द तो आपने नोट कर ही लिए हैं जिन पर हमने आज के गीत चुने हैं। आज के कुछ शब्द हैं बाबुल, वंदे, बरस, गुलबदन, प्यार, बेवफा, मन, आ जाओ, दाग, मुहे, हृदय और दुल्हनिया। तो ये हैं आज के शब्द जिन पर हमारे साथियों ने यानी आपने गीत लिखकर भेजे हैं और बहुत सारे गीत इन शब्दों से मेल खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा और सुरीला सफर इस गीत के साथ।

यह अवस्थी केएल सहगल की और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। पारंपरिक गीत रचना थी और संगीतकार थी आरसी बोराल। इस आवाज को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस आवाज को सुनना चाहते थे कार्यक्रम की शुरुआत में। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो भाई ये गाना जरूर बजने वाला है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो जब रेडियो की बात हो, रेडियो की शुरुआत हो और केएल सहगल साहब की आवाज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब हर कार्यक्रम में केएल सहगल साहब गूंजते थे, और कुछ कार्यक्रमों में तो कुछ आकाशवाणी के केंद्रों में तो केएल सहगल साहब का गीत आखिर में जरूर बजता था, और उस गीत को सुनने के लिए न जाने कितने लोग उस आकाशवाणी केंद्र को सुनना पसंद करते थे। आपको भी वो याद ताजा होगी। फिलहाल हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं उनका मैं वाचन करती हूं, उनके संदेशों का। आप लिखते हैं कि रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अंतरंग और भावनात्मक साथी है। ये दृष्टिहीन होने के बाद भी शब्दों के माध्यम से मस्तिष्क में सुंदर चित्र उकेरने की क्षमता रखता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के इस युग में रेडियो की खूबी यह है कि ये केवल ध्वनि पर निर्भर है। जब उद्घोषक अपनी गर्म जोशी भरी आवाज में श्रोता से बात करता है तो एक ऐसा आभासी जुड़ाव महसूस होता है मानो वो सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहा हो। ये वो माध्यम है जो हमें बांधता भी है और आजादी भी देता है। रेडियो हमारा जीवन संगीत है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, या अब के बरस भेजो भैया, कुछ गाने इस तरह के आपने लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे गीत आपकी पसंद से आज बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का इंतजार है, मंदाकिनी जोशी की आवाज में मैं गाने सुनने को तैयार हूं। नहीं भाई, हमारी आवाज में कोई गाना आप सुनना नहीं नहीं सुन पाएंगे। आज आप बड़े बड़े कलाकार जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं, उन कलाकारों को सुनना पसंद भी करेंगे और सुनेंगे भी। एक श्रोता लिखते हैं कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भी रेडियो खरीदा था, और रेडियो पर के एल सहगल के गाने वो सुना करती थी। और वही भारतीय प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति कहती हैं कि वे बचपन में रेडियो पर लता जी और मन्ना डे के गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी, और रेडियो से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। पहले रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और दूसरा विकल्प नहीं था, प्राय सभी के घरों में दिखता था। और आज मोबाइल ऐप आ गया है, लेकिन आज भी कार्यक्रमों को उसी अंदाज में सुना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, मुझे आपने शुभाशीष दिया, और लिखते हैं कि यथानाम तथागुण को सार्थक करने वाली आप, अपनी स्वर लहरियों के साथ जो सुंदर संगीत की गंगा बहेगी उसका आनंद ही अलग है। मंदाकिनी में डूबते उभरते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, सभी श्रोताओं के विचार सुनना भी कर्णप्रिय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना स्नेह देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीत में सुरीला सफर में शामिल सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन का खास इंतजार है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नित नवनीत नवकल्पना नव रूप से सज्जित इबारत आज नई दिशा इंगित कर रही है। शैशव काल से उत्तरार्ध के सफर में बेतार वाणी आकाशवाणी का अवदान अतुलनीय है। सामयिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी आकाशवाणी आज तकनीकी तब्दीलियों में भी ताल से ताल मिलाकर चैतन्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। संगीत प्रसारण से हिंदी प्रसार उल्लेखनीय अवदान है। देश की एकता अखंडता अक्षुण रखने में आकाशवाणी आज भी घर घर में है, और नव चैतन्य ना जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा। नव चैतन्यता जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा। क्या बात है, आपने कितने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है। शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमंत कुमार का संगीत है और बंकिम चंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं दोस्तों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे, घर में लंबे साइज वाला रेडियो जिसमें हरे रंग की लाइट वाला वॉल्व होता था, हम सभी परिवार वाले बड़े चाव से सुनना करते थे। 2001 में जालंधर रेडियो के FM स्टेशन पे फोन इन प्रोग्राम में मेरा बहुत बार फोन लगा। विविध भारती के हेलो फरमाइश में 4 बार अपनी फरमाइश फोन लगाकर पूरी कर चुका हूँ। तकरीबन अब 23 साल हो गए हैं विविध भारती पे फोन नहीं लगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित कालजई ठुमरी बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, ये ठुमरी जो अक्सर राग भैरवी में गाई जाती है, नवाब शाह द्वारा लखनऊ से निर्वासन के दौरान लिखी गई, जिसमें वे अपने शहर को दुल्हन की विदाई के रूपक के माध्यम से विदा कर रहे हैं। ये गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें नैयर सांसारिक जीवन और पिया का देश आध्यात्मिक संसार का प्रतीक है। के एल सहगल की फिल्म स्ट्रीट सिंगर और अन्य दिग्गज कलाकारों द्वारा गाए जाने के कारण ये गीत आज भी प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरा है। बहुत सुंदर, आपने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब इस गीत को सुना जाता था और आज भी उतनी शिद्दत के साथ हमारे रेडियो प्रेमी इस गीत को सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि KL सहगल जी का ये गाना मेरे पिताश्री को बहुत पसंद था, सुबह 7 बजे खुलेगी सारे गीत प्रोग्राम अवश्य सुनते थे। ये गाना सुनकर मेरे पिताश्री की याद आ गई, अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए, जब ये गाना सुनता हूँ पुराने जमाने में खो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सुरीला सफर प्रोग्राम में आपने कार्यक्रम का आगाज महान गायक कुंदलाल सहगल जी से किया, ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं भी वो आखिर में KL सहगल का गीत बजने वाला प्रोग्राम जरूर सुना करती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं

इस आवाज को आज भी एक लोकप्रिय रेडियो पर कार्यक्रम के अंत में बजाया जाता है और एक श्रोता का कहना है कि कुंदन लाल सहगल की आवाज में गाई गई सदाबहार ठुमरी मूल रूप से अवध के नवाब द्वारा रचित है। इसे राग भैरवी के सुरों में पिरोया गया और ये गीत आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो आज का ये सफर कितना संगीतमय बनने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं और आज हम आपसे सिर्फ दो सवाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे सफर में हम आपसे बातचीत करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे और आप लगातार हमें जवाब देते रहेंगे, क्यों है ना, आज का सफर तो ऐसा ही होने वाला है भाई। तो चलिए आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था और क्या अब तक आप लगातार वो रेडियो सुन रहे हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा गीत आपने रेडियो पर सुना अपने जीवन में।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवानी श्रोताओं के लिए बहुत खुशी भरा दिन है और आज का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है, रेडियो उन्हीं आवाजों का नाम है जो अनजान होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसीलिए उसके साथ बिताया हर पल एक मीठी याद बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट बहुत ही भावुक करने वाला है, मैं उत्सुक हूं कि आज के शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो की भूमिका के बारे में जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं जिसमें विविध भारतीय सेवा तो भारतीय संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन का एक जीवंत प्रतीक है। आज के इंटरनेट और डिजिटल युग में भी विविध भारती अपनी सादगी, प्रामाणिकता और सुरीलेपन के कारण करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। भूले बिस्ते गीत, सुरीला सफर, सखी सहेली और पिटारा जैसे कार्यक्रम मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर को हर घर तक पहुंचाने में आप सभी रेडियो उद्घोषकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने अपनी जादुई आवाज से न सिर्फ हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर रेडियो सुनने की एक अनूठी और बेहद खूबसूरत संस्कृति भी दी है। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये खास दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और सभी साथी उद्घोषक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लगातार आज इस सफर में हमारे साथ हैं और हमारे साथ है हमारा प्यारा साथी रेडियो। तो चलिए पुराना वो समय खंगालते हैं जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी, आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने, आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में, वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था, तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुंजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुंजा जी हाँ, वो है सुंजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से, अच्छा जो लगा रहता था।

एफएम ब्लूटूथ तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें। शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूं। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूँ रेडियो, मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया? अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने? याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं? आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था, या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा, और हमें लिख डालिए कि हाँ, ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात, कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे, आपने सुने होंगे जयमाला में, जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ, और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा, आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं, उसके बाद वंदे मातरम का गाना आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है, ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका, क्या अंतर आया जीवन में, ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा, क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की है, रख दी है। आप लिखते हैं कि रेडियो भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है, जो आप कर भी देते हैं, और आपने संदेश लिखा भी है बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा, आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते

कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूँ, अधिकतर रात में ही फटाफट फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज़ दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया।

आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया, फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही, लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में अपने उड़ान भरता था बताइएगा, कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद। हमें लगता है बहुत सुंदर गीत जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे जिन्हें मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए, वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहाँ के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊँ। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊँगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूँगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखें उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं, 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आ।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो से रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर, जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम, सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका। हंगामा और शोर शराबा जारी रहने के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज फिर विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर सदन में चर्चा करने में सहयोग की अपील की है। पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके सपनों तथा भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। श्री कुमार ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा की कार्यवाही छात्रों के प्रदर्शन पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के आरोप प्रत्यारोप के कारण बाधित हो गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठा। भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान डाकबंगला चौराहे पर उनकी गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में राजनीतिक दलों के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल थे। इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे तथा सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा बढ़ता देख मात्र 8 मिनट की कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भोजन अवकाश तक के लिए सदन स्थगित कर दी। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ताजा जानकारी के अनुसार इस समय भोजन अवकाश के बाद की कार्यवाही शुरू हो गई है। शेष समाचार एक

0: अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रसारण दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि रेडियो प्रसारण आज डिजिटल युग में भी प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारण समाचार और मनोरंजन के स्रोत होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी समेत विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका जताई गई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शिवहर के अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर अनंत कुमार ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितता और लापरवाही के मामले में कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले में स्कूली बच्चों को मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और अन्य विषयों को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित विशेष शिविर के दौरान बच्चों को अपराध के खिलाफ सजग रहने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को फौरी और सख्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस सिलसिले में अफसरान और मुलाजमीन को सभी ज़रूरी कदम उठाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दोहराया है कि मुल्क के नौजवानों की फलाह और उनका मुस्तकबिल सबसे ऊपर है। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामले पर अपोजिशन के अराकीन के हंगामे के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। हंगामे के सबब लोकसभा में वक्फ सवालात नहीं हो सका, वक्फा सिफर भी मुतासिर हुआ। हंगामे के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर वजीर पार्लियामानी उमूर किरेन रिजिजू ने आज फिर अपोजिशन जमातों से नीट पेपर लीक के मामले पर ऐवान में बहस कराने में ताउन की अपील की। जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दिलाया है कि नीट पेपर लीक मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपोजिशन से बहस शुरू होने के वक्त तय करने की अपील की। पेपर लीक मामले के सिलसिले में रियासत के वज़ीर आला सरमार चौधरी ने कहा है कि नौजवानों के मुस्तकबिल से किसी भी सतह पर खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जनाब चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने पैगाम में कहा कि नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके ख्वाबों और मुस्तकबिल के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। जनाब चौधरी ने कहा कि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रखना मोदी हुकूमत की गारंटी है। बिहार कानून साजिया के मानसून इजलास के चौथे दिन आज असम्बली की कार्रवाई तालिब इल्मों के मुजाहरे पर हिज्ब इक्तदार और मुखालिफ के अराकीन के दरमियान नोकझोंक के सबब मुतासिर हुई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही नीट पेपर लीक मामले के सिलसिले में तलबा तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे का मामला उठा।

0: बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने कहा कि तलबा के मुजाहरे के दौरान डा बंगला चौराहे पर उनकी गाड़ी पर गैर समाजी अनासिर ने पथराव किया। उन्होंने कहा कि तलबा के मुजाहरे के पसे पर्दा सियासी पार्टियों के मुजरिमाना किरदार वाले लोग शामिल थे। इस पर अपोजिशन के अराकीन हंगामा करने लगे और ऐवान के बीच में आ गए। हंगामा बढ़ता देख सिर्फ 8 मिनट की कार्रवाई के बाद ही स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने खाने के वक्फे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। इससे कबल अपोजिशन के अराकीन ने लाठीचार्ज के खिलाफ कानून साज अहाते में मुजाहरा किया। आज कौमी योम नशरिया है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई से मुल्क का पहला रेडियो नशरिया शुरू हुआ था। बाद में साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का क़याम अमल में आया और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस मौके पर पूरे मुल्क में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बिहार असेंबली के स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने यौम नशरिया के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि रेडियो नशरिया आज डिजिटल दौर में भी काबिल तकलीद है। उन्होंने कहा कि रेडियो नशरियात खबरें और तफरी का जरिया होने के साथ समाजी तब्दीली का मुअसर जरिया है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी बनी हुई है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान, मशरकी चंपारण, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी समेत मुख्तलिफ जिलों में तेज़ हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का अंदेशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और मगरबी चंपारण जिले में शदीद बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में चलाई गई गाड़ी जाँच मुहिम के दौरान पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवहर के सब डिविजनल अफसर डॉक्टर अनंत कुमार ने आज सदर अस्पताल का अचानक मुआयना किया। इस दौरान लापरवाही के मामले में कई डॉक्टरों और सेहत अमलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे यह ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिलकर के हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई

0: राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं।

0: मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रवि का था, फिल्म का नाम था आज और कल।
1: बुला रहे हैं तुम्हें।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट और मोबाइल ऐप यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज की इस विशेष सखी

तेहली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीगर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जीएस कोहली का संगीत, फारूक केसर के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शिकारी।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और
0: जी।

0: 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में
1: जी।
0: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम हैं हमारे पास, इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है
1: जी,
0: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइन्स बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
1: जी जी।
0: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
1: क्या बात है।
0: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
0: बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी
1: जी।
0: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
1: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं की शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधीर श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है, डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
0: जी हाँ।
1: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
0: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की
1: जी।
0: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज जाती है
1: जी,
0: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती हमारा चैनल है
1: जी जी,
0: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है
1: जी।
0: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है
1: जी,
0: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
1: जी,
0: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है
1: जी।
0: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि

0: जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर एक गाना बनता है, बताइए हाँ, कौन सा गाना सुना?
1: बिल्कुल
0: जिंदगी प्यार का गीत
1: या,
0: है।
1: या, बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ
0: सुनते हैं
1: जरूर से प्ले करिए।
0: सौतन फिल्म का ये गाना।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर एफएम आया, फिर एसएमएस का ज़माना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव एफएम तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज एफएम इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव भी चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या बीबीसी रेडियो उस समय जो चलते थे वो शॉर्ट वेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग

0: चलता था, उसमें
1: जी
0: भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
1: जी
0: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज़ की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी,
1: जी
0: वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया एफएम, और एफएम ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
1: जी
0: और एफएम में सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए एफएम उसके बाद से कंटिन्यूअसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो एफएम के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं,
1: जी
0: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली एफएम ट्रांसमीटर का। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए एफएम ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
1: जी जी
0: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं।
1: जी
0: और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे ज़रूर से मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप है,
1: जी
0: जिस
1: जी
0: पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं।
1: जी जी
0: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए, और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए। हम पोस्टर डाला है और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा हैं मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज़ सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा कर रही हैं अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं वडोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज़ के जरिए कल्पनाओं की एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला, और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी, धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
0: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, और
1: जी।
0: बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी, और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं, और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है, और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब 10th के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, 10th के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज़्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस मैथ्स नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़े से चैलेंजिंग ऐसे मिल जाते

0: बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं, मैथ्स में चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक एक जैसे बोलते हैं ना कि नहीं,
1: टच कर
0: अब तो
1: गई,
0: मुझे कुछ करके दिखाना ही है।
1: चुनौती के रूप में
0: हाँ,
1: लिया
0: चुनौती
1: आपने।
0: के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहाँ पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर, अलग अलग साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी,
1: जी बिल्कुल,
0: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला,
1: हाँ
0: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था। हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।
1: जी
0: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ,
1: जी
0: एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में, और दूसरा
1: भेजना
0: कि
1: नहीं
0: लड़कियों
1: है,
0: को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
1: शहर से
0: झिझक
1: बाहर नहीं जाना
0: झिझक
1: है।
0: रहती थी,
1: जी।
0: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन। और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी, और
1: अच्छा।
0: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
1: क्या
0: था,
1: बात
0: उसके
1: है।
0: कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे। तो घर पे थोड़ा मैं, जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी, तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
0: नहीं
1: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी
0: नहीं
1: बता दीजिए
0: नहीं नहीं
1: हमारे श्रोताओं को।
0: नहीं नहीं उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
1: जी। तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ
0: जी
1: जीती
0: हाँ,
1: थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दें कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं। तो अब यहाँ पर एक गाना आना चाहिए,
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
1: कौन सा गाना बताइए, रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं।
0: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ मीनाक्षी जी। हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये ना करो वो ना करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह।
0: जी जी।
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उसमें एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया था, बॉयज़ के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा। इस तरह की चीजें, क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कॉम्पिटिशन

0: मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड,
1: जी
0: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप
1: अच्छा
0: पार्टिसिपेट कर लीजिए
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा,
1: छोटी
0: वही
1: सी
0: मेरी
1: आशा
0: पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 days थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की। और फिर कॉम्पिटिशन वाला दिन आया, और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला, और 16 boys थे मेरे साथ कंपटीशन में,
1: क्या बात है,
0: सिक्सटीन बॉयज एंड आई वॉज द
1: वाह.
0: ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है,
1: क्या बात है.
0: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं।
1: जी.
0: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का।
1: बिल्कुल सही बात है. और चैलेंजेस को लेना बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती.
0: सही है।
1: और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है. यहाँ पर मीनाक्षी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
0: जी
1: फिर ब्रेक के
0: हाँ
1: बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं.

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी, आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ कुछ अपनी बातें

0: याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूँ, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगी आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये, और श्रोताओं के जो डाउट है बिल्कुल, जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी, या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे, हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था, और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलता
0: आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था
0: जी,
1: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था, और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम 1 घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है, उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, तो उसमें मैंने अपियर हुई थी, और फिर बहुत ही वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और काफी टफ एग्जाम होता है
0: जी,
1: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
0: जी,
1: तो उसका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
0: जी,
1: और
0: जी,
1: ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई, और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई, तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज
0: जी,
1: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया, क्योंकि काफ़ी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था, और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं
0: जी,
1: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफ़ी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी, और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वड़ोदरा और आज मुंबई
0: जी,
1: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए, और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
0: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं, और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है, भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे, तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा, तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर, जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी बातें
1: अच्छा
0: इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने

0: लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूं और एक शिक्षक हूं और सखी सहेली सुन रहा हूं, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूं। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर VBS अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें। यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले।
1: हाँ, श्योर श्योर।
0: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का?
1: हाँ हाँ, बहुत अच्छा।
0: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था, सुनते हैं यही गाना।
1: जी जी।

0: हमारी आर्काइव वैल्यू का जो कंटेंट है, क्योंकि आकाशवाणी का तो इतिहास बहुत पुराना है और हमारे पास कई महानुभावों की महान ऑडियो बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उस समय उसको डिजिटाइज करने का भी एक दौर शुरू हुआ था। तो उसमें ये था कि चूंकि अब कंप्यूटर आ गया है तो सब कुछ उसके थ्रू फास्ट और अच्छा होने लगा था,
1: जी
0: और जो पुराने एलपीज थे और जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको भी हम रियल टाइम में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस शुरू किया था। तो उस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं मीडिया को, जब टेप या उसके अंदर स्टोर रहता है, तो कुछ थोड़ी सी उसमें नॉइज वगैरह डेवलप हो जाती है। तो उस समय हम लोगों ने एक कोशिश की कि जो भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, जो ला रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स को, तो उसमें जो भी उसका नॉइस कंपोनेंट है
1: जी
0: उसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम, एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम उसको अच्छा बना दें, ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनाई सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मजा आता था, क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है।
1: जी
0: और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं, तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है
1: जी
0: वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है। तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था, और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी।
1: जी और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा, और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ
0: नहीं, बहुत आपके
1: जी
0: सवाल, बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार,
1: जी
0: और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है।
1: जी
0: और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है,
1: जी
0: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है
1: जी
0: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे।
1: जी
0: तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी मेरी ओर से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को, जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज़ ऑफिस में रखें,
1: जी
0: घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है, और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा।
1: जी
0: उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे

0: से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए, घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी
1: जी
0: कि ये सब चीज़ें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज़ है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करें। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं।
1: जी जी
0: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट।
1: बिल्कुल
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज द की, आई
1: जी,
0: थिंक।
1: सही कह रही हैं आप। और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं। और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं, आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
0: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के, कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है,
1: जी
0: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात है।
0: अभी अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए हैं डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफ़ी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम। तो वो माहौल वैसा ही है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स से तो मैं ये जा ही
1: जी
0: रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की, और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग।
1: क्या
0: एंड
1: बात है।
0: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ
1: जी
0: जिससे आप सीखें, दूसरे सीखें। और
1: जी
0: मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
1: जी जी
0: बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीज़ें सीखती हूँ।
1: जी जी
0: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीज़ें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूँ और अपने आप को अपडेटेड रखूँ।
1: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें। और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुँचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
0: क्या
1: है भाई,
0: आज
1: भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है।

0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से एफएम ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी, सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहाँ पर
1: बिल्कुल
0: गाना है ये,

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दे, उसे जरूर पंख दे, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देशभर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती है
0: जी।
1: परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकते हैं
0: जी।
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूँगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए।
0: क्या बात है।
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर

0: इसका बैलेंस बनाए रखें, हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान टायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से, और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुँचे और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो छिपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी।
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छिपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी वो चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा।
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मूठी जिनको बोलते हैं।
0: जी जी।
1: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मूठी।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, ईजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर

0: पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
1: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुंच चुका है?
0: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा। मैं अच्छा। लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
1: किस तरह से ये भी बताइए
0: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
1: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नट्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और

0: से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है। जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन के साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया।
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ। आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर, हमारे पास में यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराई नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी। और सर ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।

0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहां रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहां पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ मेरे को, ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी।
0: जी मुलाकात होती, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो एफएम पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार।
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी जी सर प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है
0: जी।
1: तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ।
0: स्वागत।
1: मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं
0: जी, जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे हमने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल,
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
0: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी भोपाल के क्या हालचाल हैं?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बनबिहार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही है मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा
1: हुआ। और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी सर नमस्ते, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही सर,
0: जी,
1: बड़े
0: मुझे
1: दिनों
0: भी अच्छा
1: बाद
0: लग रहा
1: फोन
0: है।
1: कनेक्ट हुआ है। तो सर विद भारती के बारे में आप कितना कुछ बताऊं उतना कम है,
0: जी
1: क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम,
0: हाँ
1: और जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो।
0: जी
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, और सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मीपना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: जी, वो मेरा एक दौर था जब दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है, उसके
0: जी
1: बाद मेरी लाइफ में वापस एक यू टर्न आता है,
0: जी
1: और विविध भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है
0: बहुत
1: सर।
0: शुक्रिया। और आज
1: जी
0: किस
1: जी
0: गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मेरा अभी, क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता
0: नहीं नहीं
1: दूं?
0: बिल्कुल गाइए।
1: रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था।
2: खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो,
1: ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने
1: सर,
0: फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश। हाँ
1: सर जी
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: जी। सर बस बहुत अच्छा हूँ, और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो बड़ा अचंभा लगा, भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर्स हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारामन।
0: सीतारामन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनुस खान बोल रहे क्या?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मेरी प्रेजेंट सरप्राइज है। और सब कैसे है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगाव है। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का।
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा। बोल यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन ही चलते, हमारा गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
0: जी हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
1: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा, बोलिए कैसे हैं जी।
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है। मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है। इस बार सावन लेट है, तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है
0: जी, जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में।
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है
0: जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा, तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ, अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में,
0: हाँ
1: धीरे
0: हाँ
1: धीरे जम जाएगा।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और
1: जी
0: बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002662। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग करने की अपील की।
1: वो बहाना ढूंढ रहा, आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही बोलता है अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा को भी नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक लगभग 324.7 गीगावाट तक की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इससे देश बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली की पर्याप्तता वाले देश में बदल गया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। श्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से भी मुलाकात की और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के

0: लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में 3 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब एक नज़र डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर, जो इस प्रकार हैं।

5:10 पर हम आपको सुनाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युवा वाणी। इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे भारतीय प्रसारण के 99 वर्ष और उसके साथ ही साथ आज हमारे वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर भी हम बात करेंगे। शाम के 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन, 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे किसान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। शाम के 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत, और शाम के 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताते हैं स्थानीय गतिविधियां और साथ ही साथ हम आपको सुनवाते हैं कुछ चुनिंदा बेहतरीन फिल्मी नगमे। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और समाचार के तुरंत बाद जिले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे 7:50 पर आपको सुनवाएंगे विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और शाम के 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से।

8:15 पे हम आपको सुनवाएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम, ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। रात के 9:00 हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोकधारा। 9:15 पे हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात के 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। और 10:15 पे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग रस रंग। 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर हम आपको कल होने वाले कार्यक्रमों की सूची के बारे में हम आपको बताएंगे, यानी कि अगले दिन का जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। रात के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त हो जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। तो आप बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ। और कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रवि सचदेवा, FM मैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं और आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और इस कार्यक्रम का पहला ये हमने कार्यक्रम लिया है भक्ति संगीत से, और भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यानी वंदन, आइए अब शुरू करते हैं। और इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कोरस ने, इसे लिखा है अनुराधा पौडवाल ने और संगीत अरुण पौडवाल का है।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कोरस की आवाज़ में ये प्यारा सा भक्ति संगीत। अब लीजिए श्रोताओं, एक और प्यारा सा भक्ति संगीत हम आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में। इस भक्ति सॉन्ग को लिखा है राजेश जौहरी ने और संगीत अनूप जलोटा का है।

इस प्यारे से भजन को सुनने के बाद आइए श्रोताओं, एक और आपको प्यारा सा भजन अनूप जलोटा की ही आवाज़ में मैं सुनवाता हूँ।

बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं तो एक नया अर्थ सामने आता है। अब तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम और पिया भी शाम, तो शब्दों

ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा पीयूष पवार जी संतूर पर आपको वही बजा के सुनाएंगे। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं।

इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युवा वाणी। तो एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं हमारे युवा साथियों का ये मनपसंद कार्यक्रम

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको जिक्र किया था कि आज जो है वो हमारे भारतीय प्रसारण का जो है कि वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे है आज, और आज रेडियो के जितने भी हमारे श्रोता हैं और हम सभी, आज ये दिन जो है हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, खास करके हमारे किसान भाइयों के लिए और जो गांव में रहते हैं उनके लिए, हम सभी के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आज का दिन भारतीय प्रसारण के इतिहास में विशेष महत्व है। आज ही के दिन ठीक 99 साल पहले 23 जुलाई 1927 को मुंबई में भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थानिक प्रसारण की शुरुआत हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय प्रसारण आज से अपनी शतकीय सोपान की ओर बढ़ रहा है। इस शतकीय यात्रा में रेडियो की तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। पारंपरिक मीडियम वेव से लेकर शॉर्ट वेव होते हुए रेडियो अब FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के साथ ही डिजिटल दौर में प्रवेश कर गया है। मीडिया के चरित्र में भी 100 साल में बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन रेडियो आज भी संवाद और मनोरंजन के सहज संचार माध्यम के रूप में जिंदा है। आसानी से हर जगह उपलब्धता और विशेष तकनीक की वजह से आपदा के क्षणों में संचार के दूसरे माध्यमों की तुलना में रेडियो अब भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम बना हुआ है। समुद्री तूफानों, सुनामी, कश्मीर घाटी की बाढ़ आदि मौकों पर संवाद के लिए रेडियो ने अपनी ताकत और उपादेयता को बार बार साबित किया है। देश से माओवादी और नक्सली आतंक का खात्मा हो चुका है, लेकिन एक दौर में विशेषकर बस्तर के नक्सली इलाकों में नक्सलियों से संवाद के लिए रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाता था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सबसे पहले जो है कि 6 लाख की पूंजी से शुरू की गई थी। दोस्तों, बहुत मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप सालों से आप जो रेडियो सुनते आ रहे हैं, वो रेडियो कैसे इसका सफ़र शुरू हुआ और किस तरह से होते होते आज कहां तक पहुंच गया है, और आगे इसके लिए पूरा का पूरा आसमान खुला हुआ है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 6 लाख की पूंजी से शुरू की गई थी। कंपनी ने रेडियो प्रसारण के लिए अंग्रेज सरकार से 13 सितंबर 1926 को करार हुआ था, जिसके तहत उसने प्रसारण शुरू किया। कंपनी को पूंजी में से 4.5 लाख रुपए दोनों रेडियो केंद्रों की स्थापना में ही खर्च हो गए। उसकी आमदनी का स्रोत रेडियो लाइसेंस फीस थी, जो प्रति रेडियो 10 रुपये थी। बहुत कोशिशों के बावजूद सिर्फ 8,000 ही लाइसेंस दिए जा सके। तब प्रसारण 1.5 किलोवाट के ट्रांसमीटरों से बमुश्किल 30 मील के ही दायरे में हो पा रहा था, लिहाजा रेडियो का प्रसार

नहीं बढ़ा। कंपनी को रेडियो प्रसारण के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही थी, लिहाजा यह कंपनी 1930 में ही बंद हो गई, न चाहते हुए भी। भारत में आधुनिक प्रसारण की ठोस बुनियाद रखने का श्रेय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पूर्व प्रसारक लायनेड फिल्डेन को जाता है। लिनलिथगो की पहल पर उद्योग और श्रम विभाग के अधीन अप्रैल 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई। इसे रेडियो प्रसारण को नया रूप देना था। इसके बाद अगस्त 1935 में लायनेड फिल्डेन को इस सर्विस का कंट्रोलर नियुक्त किया गया। फिल्डेन को यह नाम पसंद नहीं आ रहा था। फिल्डेन ने अपनी पुस्तक नेचुरल बेंट में लिखा है कि उन्होंने लिनलिथगो को सुझाया कि ब्रॉडकास्टिंग शब्द कठिन है जो आसानी से भारतीयों की जुबान पर नहीं चढ़ पाएगा। फिर यह नाम भारत सरकार अधिनियम के अनुकूल नहीं है, लिहाजा उन्होंने इसे ऑल इंडिया रेडियो करने का सुझाव दिया, जिसे लिनलिथगो ने स्वीकार कर लिया। इसी के बाद 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से दिल्ली के अलीपुर के 6 कमरों के एक घर से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई। कुछ महीने बाद यह दफ्तर दिल्ली के संसद मार्ग स्थित नए बने प्रसारण भवन में आया और तब से लेकर अब तक दिल्ली केंद्र का प्रसारण वहीं से हो रहा है। भारत का सार्वजनिक रेडियो 3 मई 2023 से सिर्फ आकाशवाणी के नाम से जाना जा रहा है। वैसे ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम गांधी जयंती के दिन यानी कि 1957 में दिया गया, जिसे अगले दिन से लागू किया गया। आकाशवाणी का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में आकाश से आने वाली आवाज़ या देववाणी के रूप में खूब मिलता है। वैसे आकाशवाणी के नाम से मैसूर के विद्वान MV गोपाल स्वामी ने 10 सितंबर 1935 से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। यह प्रसारण केंद्र मैसूर राजमहल से कुछ 100 मीटर दूर स्थित है। 1938 में कलकत्ता में शॉर्ट वेव के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उस मौके पर प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से एक कविता मांगी थी। टैगोर ने बांग्ला की जो कविता प्रसारण के लिए दी, उसमें भी रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब श्रोताओं, इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय देश में रेडियो का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था। उसी दौरान 1942 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता की अगुवाई में मुंबई से कांग्रेस रेडियो और रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद रेडियो का प्रसारण शुरू किया।

बोस जहां अपने रेडियो के जरिए भारतीय जनता से संवाद कर रहे थे, कांग्रेस रेडियो भूमिगत ढंग से चलाया जा रहा था, जिसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को सूचनाएं दी जा रही थीं। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार ने देश में 9 रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, त्रिचिरापल्ली, चेन्नई, ढाका, पेशावर और लाहौर में था।

बंटवारे के बाद भारत के हिस्से 6 रेडियो स्टेशन आए, जबकि पाकिस्तान को ढाका, पेशावर और लाहौर स्टेशन मिले। आज़ादी के बाद देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली। उन्हें रेडियो की महत्ता का भान था, इसलिए उन्होंने रेडियो के तेज विकास और प्रसारण मंत्रालय के

जिम्मेदारी सरदार पटेल को लेनी पड़ी। इसलिए उन्होंने रेडियो के तेज विकास की नींव रखी। आज़ादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन 16 जुलाई 1948 को शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पटेल ने किया था। इसके आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनवा दें। तो आइए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारलाल का है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो श्रोताओं, मैं बात कर रहा था कि रेडियो के तेज विकास की नींव रखी थी हमारे सरदार पटेल ने, और आज़ादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन जो है कि वो 16 जुलाई 1948 को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन पटेल ने किया था। स्वाधीन भारत में रेडियो का चरित्र और लक्ष्य क्या होगा, इसका संकेत सरदार पटेल के उस उद्घाटन भाषण में दिखता है। सार्वजनिक प्रसारण के रूप में रेडियो के लक्ष्य को एक तरह से मद्रास प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर सी राजगोपालाचारी ने 1938 में ही रख दिया था। 16 जून 1938 को मद्रास रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए राजगोपालाचारी ने रेडियो को लोक जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया था। इसके साथ ही उन्होंने संचार के तेज माध्यम के रूप में रेडियो का शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधित जानकारी देने के लिए करने पर जोर दिया था, जो कि आज आप सुनते हैं। यहां यह बताना जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक प्रसारण के रूप में रेडियो आज भी यह भूमिका बखूबी निभा रहा है। भारतीय इतिहास में रेडियो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना की देश को जानकारी

रेडियो के जरिए ही मिली। तब माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने रेडियो के ही माध्यम से अपने विचार रखे थे। 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को भारत की आज़ादी के बाद नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को देश ने रेडियो के जरिए सुना था। गांधी जी जिंदगी में सिर्फ एक बार 12 नवंबर 1948 को दिल्ली केंद्र आए थे। यहां से उन्होंने रेडियो के जरिए कुरुक्षेत्र स्थित शरणार्थियों को संबोधित किया था। उसका सकारात्मक असर पड़ा। गांधी इसके बाद रेडियो के मुरीद हो गए थे। इस याद को आकाशवाणी ने 12 नवंबर के दिन को लोक प्रसारण दिवस के रूप में याद रखा है। 23 जुलाई 1927 को महज शौकिया प्रसारण से शुरू हुई आकाशवाणी का प्रसारण आज विशाल वट वृक्ष के रूप में फैल चुका है। दोस्तों, आज 232 केंद्रों, 304 चैनलों और 756 ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक है। इसकी पहुंच देश के करीब 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99% जनसंख्या तक है। आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक है। इसकी पहुंच देश के तो कह सकते हैं कि 100 साल में प्रसारण आज देश की धड़कन बन चुका है। जिसमें आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक है। इसकी पहुंच देश के तो कह सकते हैं कि 100 साल में प्रसारण आज देश की धड़कन बन चुका है। जिसमें सूचनाएं हैं, संगीत हैं और लोक जागरण का संदेश भी है। तो दोस्तों, ये थी आज भारतीय प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बेहतरीन और कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपके साथ साझा की। तो एक और हम गीत सुन लेते हैं और उसके बाद अगर टाइम रहा तो आज हम अपने देश के हीरो यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पर हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, मैंने कहा था कि टाइम बचेगा तो हम आपको हमारे देश के हीरो, हमारे हिंदुस्तान के हीरो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। आज बहुत सारे युवा जो हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरणा लेते हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। वे एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जुलाई 1906 को जो भाभरा, जो कि अब चंद्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। और माता का नाम जगलानी देवी और पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। मात्र 14-15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और गिरफ्तार हुए। मैजिस्ट्रेट के सामने जब उनकी उम्र पूछी गई तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। तभी से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। दोस्तों, वे एक संगठन से भी जुड़े थे उन दिनों, और वो संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। और उनके जो भी नेता थे, उनके मुख्य नेताओं में से ये भी एक थे। इनके दोस्तों में से भगत सिंह थे, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज पुलिस उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में है इलाहाबाद के, तो उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था। भारी मुकाबला करते हुए जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनका यह संकल्प पूरा हुआ कि वे हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जब तक, मतलब उनके, जब उन्होंने अपने आप को शूट किया और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी कई घंटों तक जो है कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जा करके ये देखें कि वे जिंदा हैं कि मर गए हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और डरते हुए आगे बढ़े, और जब थोड़ा करीब गए तो पहले उन्होंने उनकी लाश पर गोली चलाई ये देखने के लिए कि क्या वो अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं। इतनी भय थी अंग्रेजों के बीच। तो श्रोताओं, ये थी हमारे शॉर्ट में, मैंने आपको बताया है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो आइए आपको गाने की तरफ ले चलते हैं, जो कि ये गाना आपके बैकग्राउंड में बज भी रहा है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। तो बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

आरोप प्रत्यारोप के कारण रुक गई। सदन में ग्रामीण विकास विभाग और दोसर विभागन के बजट मांग पर चर्चा कई गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज वर्चुअल माध्यम से पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण के शिलान्यास कैलन। लगभग 99,97,00,000 रुपया की लागत से बने वाला इस संस्थान राज्य के लयकी के उद्योग के जरूरत के हिसाब से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देही। ओहिजे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के माध्यम से बिहार के युवा लोगन के अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से ट्रेनिंग दे के देश और विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करावे के लक्ष्य बा। यह मौका पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना खातिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर दस्तखत भी कई गई बा। समारोह में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और राज्य सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहलन। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बा। आज ही के दिन 1927 में बम्बई से देश के पहला रेडियो प्रसारण शुरू भइल रहे। बाद में साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भइल और 1956 में एकर नाम आकाशवाणी राखल गइल। ए मौका पर पूरा देश में कई गो कार्यक्रम आयोजित कइल गइल रहल बा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसारण दिवस पर अपन संदेश में कहलन कि रेडियो प्रसारण आजुओ डिजिटल जमाना में उतने प्रासंगिक बा। उ कहलन कि रेडियो प्रसारण समाचार और मनोरंजन के जरिया होके के साथ ही साथ सामाजिक बदलाव के सूत्रधार भी बा। राज्य के अलगे अलगे हिस्सा में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रियता बनल बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहरिया के बादे गोपालगंज, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी सहित कई गो जिला में तेज हवा के साथे बारिश भइल। एह दौरान कुछ जगहन पर ठनका गिरे के भी खबर आ रहल बा। विभाग अगला 24 घंटा के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिला में भारी बारिश की संभावना के लेके येलो अलर्ट जारी कैले बा। नेपाल के तराई इलाका और राज्य के अलगे अलगे हिस्सा में बारिश के चलते गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी सहित कई गो नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज कैल जा रहल बा। केंद्रीय जल आयोग से मिलल रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी के जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और मुंगेर में लगातार बढ़ रहल बा। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरा के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रहल बा। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान के पार कर गइल बा। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरा के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रहल बा। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी जीवन चंद्रा के खिलाफ

आप कार्रवाई करे के निर्देश देले बाड़न। आरोपी पदाधिकारी के मूल वेतन से अगला 3 साल तक 25% के कटौती कैल जाए। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 6:10 हो चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे उस कार्यक्रम को सुनवाने का जिसे हमारे किसान भाई और बहन बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और तो आइए हम शुरू करते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुगिया बहन की तरफ से प्रणाम, और जगत भाई आपके भी नमस्कार।
1: नमस्कार ये सुगिया बहन और सब श्रोता भाई लोगन के भी जगत भाई के नमस्कार।
0: जगत भाई
1: जी,
0: देखिए खेती के जो मतलब धान के रोपनी के समय बा उ लगभग लगभग एकदम अंतिम सीमा पर चल रहल बा, और हमनी के चाहे भी कि जितना जल्दी हो सके यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हमनी के हर हाल में रोपनी के काम पूरा कर लेवे के चाहिए। ये हमनी के बार बार संदेश आकाशवाणी के माध्यम से जा रहल बा श्रोता भाई बहन के।
1: सुगिया बहन बात तो तू सही कहल हो
0: जी,
1: लेकिन प्रकृति भी बेरुखी कर रहल बा। कहीं बारिश इतना बरस जाता आ कहीं इतना बरसते नहीं कि कहीं रोपनी लागल
0: जी। देखिए जगत भाई बात तो वो बहुत अच्छा कहनी, सही कहनी, लेकिन एकर कारण भी एक तरह से कहीं ना कहीं हमनी के दोषी भी हमनी के बानी जा। काहे कि दिन पर दिन जितना पेड़ कटत जा रहल बा ओ के मतलब जितना लगावे के चाहिए, जनसंख्या बढ़त जा रहल बा, पेड़ कटत जा रहल बा, तो ऑक्सीजने नहीं मिल पावत सही तरीके से, बारिश के खिंचाव नहीं हो पावत।
1: देखी बात तरवा सही कहते नहीं कि बारिश के रुकावट नहीं के हो पाऊ। हमार देखी कहे के मतलब ये बात कि कहीं हमनी के जिला में
0: जी
1: कहीं बारिश जने घेर सूजा लटक गिल बरस के, और हमने के चल जा जाओ है दखिना तरफ
0: जी,
1: बारिश के उतना नहीं के खेत में अभी सूखल बा, तो जहाँ पानी के व्यवस्था बा नहर बा या बोरिंग बा वहिया तो लगभग रोपनी कहीं शुरू भइल बा तो कहीं समाप्त के बोलबा
0: जी,
1: लेकिन जहाँ प्रकृति पर लोग निर्भर बा वहिया तो अभी रोपनी शुरू नहीं भइल
0: जी।
1: तो एमे किसान भाई लोग के भी चाहिए कि कहीं से व्यवस्था बना के ओकरा के रोपनी लगभग हमने के समाप्त कर लिया जाए। एक कहावत भी बा कि आगे खेती आगे आगे
0: पीछे खेती भागे जोगे,
1: इसे खेती में जहाँ हमने के चुकल जी तो सालों भर चुके के पड़े। उसे ही देखत तियन तरकारी के भी भरमार भइल रहता, लेकिन ये बरसात में भी तियन तरकारी मिलल दुर्बल हो जाला
0: जी। यही से पहले लोग सुखौता बनावत रहे, अब तो फैशन में सुखौता बनावल खत्म हो गई।
1: देखिए अब सुखौता के जब बात कहल है सालों भर अब हरियर सब्जी भेटाए लागल, अब पहले सालों भर हरियर सब्जी ना भेटात रहे, इसे जब रोपनी लागत सन
0: तब घड़ी सुखौटा
1: के महत्व ओकर पढ़ जात रहे, लेकिन आजो सुखौटा रोपनियन मांगे ली सनी बात नहीं खे।
0: लेकिन अब कोई सुखावत कहाँ बा?
1: कहाँ बा? बात बात देखिए यही कल ही कि अब सुखौटा तो भेटाते नहीं खे, एगो तनी मनी अदौरी अभी मिल जाता, लेकिन आवे आगे समय में लगता कहू धीरे धीरे
0: समाप्त हो जाए। लेकिन बात तो हमने बहुत अच्छा कहनी है जा, मतलब रुआ बतैनी बहुत अच्छा बात। अब हमने के कुछ कार्यक्रम के संबंधित जानकारी ले लेवे के।
1: देखिए कार्यक्रम के तो निश्चित

0: तो बाकी आज हमने के जानकारी करे के बा और जवन भी हमने के कार्यक्रम अपन बताई ना जा
1: जी जी
0: तो निश्चित बा खेती से जुड़ा रहला तो
1: काहे के कार्यक्रम ही है खेती वाणी वाला खेती किसानी वाला
0: इससे हमने के सबसे पहले देश विदेश में बात जाना जो खेती संबंधी रहे
1: जी जी
0: इकरे बाद एगो भेंट वार्ता सुना जी अति संघन बागवानी के का फायदा बा भेंट वार्ता कर रहे हैं विजय बहादुर सिंह और यहाँ से भेंट कैले बन डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी
1: जी।
0: इकरे बाद नया उम्र के नया फसल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जानकारी भी
1: जी।
0: क्योंकि फसल के भी बीमा होला जैसे हमने के बीमा होला
1: आदमी के बीमा
0: मवेशी
1: के बीमा जी
0: फसल के अलावा पशु के टीकाकरण जरूर करावे के बड़ुए जरूरी बा ई आज के नसीहत रहे
1: आदमी के जैसे मतलब बच्चा सब के रोग प्रतिरोधक क्षमता खातिर या अन्य बीमारी से बचावे खातिर टीकाकरण जैसे होला ओ तरह से पशु के भी टीकाकरण
0: तो ऐसे करावल जरूरी बा
1: जी। तो अब समय बा कि हमनी के देश विदेश के अंतर्गत कुछ
0: जी जी
1: कृषि संबंधी समाचार जानल जाओ। देखिए कुछ खबर हमरा पास बा। पहले हमनी के भारत के खबर जानल जाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नकली बीज और कीटनाशक पर सख्त कार्रवाई के आवश्यकता पर बल देले बानी। साथ ही आईसीआर के नया कृषि तकनीक के देश के लगभग 10 करोड़ किसान तक पहुंचावे के लक्ष्य रखल गई बा। अगला खबर बा कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कहनी कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुकल बा। अब किसान के आय बढ़ावे खातिर कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण और बेहतर बाजार उपलब्ध करावे पर जोर दिहल जा रहल बा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 98वां स्थापना दिवस पर जलवायु अनुकूल कृषि नया फसल किस्म और वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित कृषि व्यवस्था के लक्ष्य के दोहरैले बा। और कुछ खबर बा विदेश से। यूरोप के खबर बा कि भीषण गर्मी और लू के कारण यूरोप में लगभग 2 अरब यूरो मूल्य के गेहूं मक्का और अन्य फसल प्रभावित भइल बा। विशेषज्ञ के मानना बा कि एकरा से वैश्विक खाद्य कीमत पर असर पड़ सकता। मौसम विशेषज्ञ जोन अल नीनो के प्रभाव के देखते हुए चिंता जतौले बनी और एकरे कारण कई देश के मानसून और वर्षा प्रभावित हो सका था जौना से कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़े के संभावना बा।
0: देखी एक और खबर हम लोग
1: जी बताई
0: कि अब जौन सुबह में मानर कुंड हमने के जब सरकार रोक लगे रहे
1: जी
0: माने यहाँ के प्रशासन
1: जी जी
0: अब ओकरा के खोल दिया गया सुबेरे 6 बजे से शाम 5 बजे तक। एकरा में लेकिन कुछ और बढ़ुए कि प्रवेश और भ्रमण खातिर एकरा खोलले बा सुबेरे लेकिन ओकरा में दुपहिया वाहन जौन में 150 और चार पहिया 75 गो जौना में पिकअप ट्रैक्टर वैन टाली ई सब मालवाहक ई सब
1: प्रतिबंधित
0: बा। तो देखी ई निमन खबर बड़ुए कि हमनी के पर्यटक खातिर एकरा के खोलल
1: गेल बा जी। देखी अभी हमनी के बात करत रही जा देश विदेश के अंतर्गत कुछ कृषि से संबंधित समाचार के। अब हमनी के एक भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी लिया जाओ आज की बातें के अंतर्गत विषय व भेंट वार्ता के अति सघन बागवानी के फायदे और भेंट करता बनी विजय बहादुर सिंह भेंट वार्ताकार बनी और भेंट करता डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के माध्यम से जाने के।
2: श्रोता सब बरसात में पौधन के लगावल जाला आ इस समय नया जोन तकनीक आइल है पौधन के लगावे के पेड़ पौधा लगावे के ओकरा में अति सघन बागवानी
3: जी
2: एक नया तकनीक बा जोन कि इजराइल से शुरू भई रहे
3: जी
2: हमरा देश में भी आइल बा कि कम जगह में अच्छा उत्पादन जोना से लेहल जा सके
3: जी।
2: पहले आम का पेड़ रहा सब बड़ा बड़ा

0: पेड़ हुई सन अमरूद बा या एक अलावे अन्य भी जौन कटहल बा जामुन बा बड़ा बड़ा पेड़ हुई सन वो अनुपात में फलन नहीं हो पाई। बहुत बड़ा पेड़ बा पुराना पेड़ बा मुश्किल से 3 क्विंटल 2 क्विंटल आम का फलन मिलेला। उकरा चलते हमनी के अति सघन बागवानी के तरफ आवे के पड़ी। अति सघन बागवानी हो भी रहल बा देश भर में। हमनी के क्षेत्र में किसान बनी विजय बहादुर सिंह जी जौन अति सघन बागवानी करीला यहाँ का सबया राजपुर रोहतास के रहे वाला हैं। ताज यहाँ से जानल जाओ कि अति सघन बागवानी से का लाभ बा आ कैसे करे के चाही। विजय बहादुर सिंह जी आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत बा। ये बताई कि जौन अति सघन बागवानी कैली आ पहले पारंपरिक रूप से खेती करत रही पौधा लगावत रही पेड़न के दोनों में फर्क का महसूस के
1: किसान भाई अभी जौन बातन सघन बागवानी अति सघन बागवानी आ एक पारंपरिक के जो विधि से जौन हमनी के पूर्वज लगावत रहन तो ओकर जौन दूरी रहत रहे 10 से 12 मीटर रहत रहे। सघन बागवानी में दूरी 5 मीटर बाई 5 मीटर हो गई। आ अति सघन बागवानी सघन बागवानी के मतलब कि हाई डेंसिटी, अति सघन बागवानी मतलब कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी, वो और दूरी कम हो गई। जबकि आम्रपाली के पौधा जौन बढ़ुए मल्लिका के पौधा बढ़ुए आम के तो अति सघन बागवानी में 1 एकड़ में 1600 पौधा होला। 1 एकड़ में 1600 पौधा अति सघन बागवानी। लेकिन ओकरा में कैनोपी मैनेजमेंट कइल जाला। अति सघन बागवानी में किसान के बहुत सतर्क रहे के पड़ला। सघन बागवानी में तो ज्यादा सतर्क नहीं के रहे के ऐसे ओकर दूरी 5-5 मीटर हो गई। तो 5 मीटर के बात भइल तो जहाँ हम 1 हेक्टर में 100 पौधा लगावत रही ओहिजा जौन बा तौन हम सघन बागवानी में हाई डेंसिटी में 5 मीटर के दूरी पर जब लगावत नहीं 5 मीटर लाइन से लाइन आ 5 मीटर पौधा से पौधा तो ओह में हमार 4 गुना बढ़ गए यानी 400 एक हेक्टर में हो गए। आ उहे जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगावत नहीं अति सघन बागवानी तो ओह में हो गए 2.5 मीटर तो ओह में 1600 पौधा हो गए। 1600 पौधा 1 हेक्टर में हो गए। तो किसान भाई ओकरा में बहुत सचेत रहे के बा। सचेत ऐसे रहे के बा कि किसान के उतने हाई डेंसिटी हाई पावर में रहे के बा कि हमार जब फल के तुड़ाई हो जाए तो हम ओकरा के 25% बायोमास बा तवन जैसे हम बाल अपन काट तानी वैसे ओकरा के निकाल देवे के बा। सूर्य के प्रकाश में लागे के चाही। एक पौधा से दूसरा पौधा के सटे के ना चाही। जब सट जाई तो फिर जौन बा तवन अगला साल फली ना।
0: जी विजय बहादुर जी, लेकिन ई कहल जाला कि जैसे कहतली है कि 1 हेक्टेयर में हमनी के पहले 100 गो लगावत रहे सघन बागवानी में 400 हो गई, अति सघन बागवानी में 1600 हो गई। अब एक चीज बताई कि पौधा तो हमनी के ज्यादा लगावे के पड़ल तो खर्च ज्यादा पड़ल ओकर देख रेख ज्यादा हो गई का फलन जोन बाटे जैसन कहल जाला कि फलन ओकरा में ज्यादा होला उत्पादन ज्यादा होला का ई सही बात बा।
1: अब देखी अब अगर 100 पौधा से हम लेता नहीं बीजू पौधा लगावतानी या कलमी पौधा लगावतानी अगर 100 गो पौधा होई तो ओकरा तैयार होखे में भी हमरा पूरा समय लागी। लेकिन जब सघन बागवानी लगावतानी 400 पौधा तो उ पौधा जौन बढ़ुए तौन हम नीचे से ही तुड़ाई कर लेब। नीचे से तुड़ाई कर लेब। अति सघन बागवानी में भी हम नीचे से तुड़ाई कर लेब आ कम समय में ज्यादा उत्पादन होई हमार जौन जौन ज्यादा उत्पादन होई। कारण का बढ़ुए कि हमार कोई भी क्षेत्र खाली नहीं खे रहत आ उसमें जौन पारंपरिक रूप से जौन लागत रहे उसमें पूरा जमीन परती रहत रहे।
0: बीच के जगह खाली रहत रहे
1: जी आ कुछ ना नीचे धा से कुछ होत ना रहे आ ये हमें पूरा जमीन के माने सदुपयोग हो रहल बा। तो सदुपयोग हो रहल बा तो उ जौन बा तवन उसमें फलन ज्यादा आई। रह गई कि बस थोड़ा सचेत रहे के बा कि ओकरा में कैनोपी मैनेजमेंट आदि छत्र प्रबंधन काट छाँट करे के बढ़ुए ट्रेनिंग प्रूनिंग हमेशा करे के बा। हमेशा करे के मतलब बढ़ुए कि मतलब कि बरसात जैसे ही आई फल के तुड़ाई हो जाए तो ओकरा के 25% ओकर जौन बा तौन काट छाँट कर देवे के बा। जी काट छाँट करके हटा के जला देवे के बा ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जौन बा तवन ओकरा के अथी ना हुई।
0: जी जी अब अति सघन बागवानी करे के कैसे हुई हमनी के कैसे लगावे के
1: करे के बढ़ुए कि अति सघन बागवानी में हमनी के खेत के, जैसे मान ली एक एकड़ खेत बड़ हुए तो एक एकड़ खेत के हम जुताई कर देनी जो भी

0: एक एकड़ खेत के जुताई कर देनी, कुछ दिन सूखे खातिर ओकरा के मिट्टी के छोड़ देनी, एकरा बाद में हम नापी करके जैसे अति सघन बागवानी में 2.5 मीटर के दूरी पर जौन हम वातावरण 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा हम गड्ढा खान के 15 दिन ओकरा के मिट्टी निकाल के धूप लागे खातिर छोड़ देनी। एकरा बाद में 15 दिन के बाद में हम जौन वातावरण ओकरा में बर्मी कंपोस्ट होखे चाहे पुराना कंपोस्ट होखे ओकरा के कम से कम 15 किलो 20 किलो या 50 किलो कंपोस्ट डालल जी। 15-20 किलो अगर बर्मी कंपोस्ट डाल तन जा तो 50 किलो कंपोस्ट डाले के पड़ी। दोनों में कौनों में मात्रा इतना कम बेसी होखे के चाहिए
1: जी।
0: दूसरा चीज बा कि एक चुटकी थाइमेट हरेक थाला में डाले के पड़ी जी, ताकि कि खेत में जवन दीमक होलन या व्हाइट ग्रब जौन कहालन मंगरा ई सब चीज जौन बढ़ुए तवन ई कीड़ा मकोड़ा हमें ना लगी हन
1: जी।
0: आ कुछ जमीन जैसे कमजोर बा तो मिट्टी जांच के आधार पर ओकरा में हम कुछ मिट्टी खाद भी डाल सकी ना, मान ली कि 100 ग्राम के हिसाब से डाल के फिर वो गड्ढा के भर देव आ भर देव, एकरा बाद बरसात के इंतजार करब, बरसात में बैठ जाई, बैठला के बाद में हम पौधा के चुनाव करब आ पौधा हम कोई बढ़िया संस्थान से ले आई जहाँ जैसे मान ली कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और बा या कृषि विज्ञान केंद्र में भी पौधा आयल बाड़ी सन, तो ऐसन ऐसन जगह से हम पौधा ले आई आ ले आके आ ओकरा के उसमें या तो पुआल लगाओ रहला या प्लास्टिक के लगाओ रहला ओकरा के फिर उतने हम माने लगभग 1 फीट गड्ढा करके या वो गड्ढा में जौन बात उन प्लास्टिक निकाल के आ थोड़ा पानी डाल के या फिर जौन बात बैठा दे बैठा के या खड़ा होके या ओकरा के मिट्टी से भर दे पूरा दबा के या गोड़ से दबा दे आ एकरा बाद में पानी दे दे जी।
1: एह तरह समनी के रोपण कर ले
0: जी। आ सब चीज बात ना पटवन करे खाती सिंचाई करे खाती हमारा ड्रिप सिस्टम जौन बात एकरा में लगाना जरूरी बा। ड्रिप सिस्टम या माइक्रो लगाई जी, फ्लडिंग सिस्टम से उतना पानी ना एथी हो पाई। अब ज्यादा घास ओस जामे के एथी रहला लेकिन ड्रिप सिंचाई से बहुत अच्छा होला।
1: अच्छा घास ओस का बात करते हैं तो घास के हमनी के समय समय पर
0: समय समय पर चाहे अभी रवा बहुत सस्ता है घड़ी पावर बीडर चलल बा 34,000-40,000 में मिल रहा बा पेट्रोल इंजन से चले वाला ओकरा में रोटावेटर बा ओकरा से जोताई कर दही साल में 2 बार जोताई कर दही कीड़ा मकोड़ा भी वातावरण बेथी से सूख जई हाँ ना घास भी एको ना जामी
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा सिंचाई हो गई
0: जी।
1: जौन कलि हाँ कैनोपी मैनेजमेंट कटाई छटाई
0: जी
1: हमने के कितना ऊंचा तक पौधा रखे चाहिए?
0: हम जैसे कि शुरू शुरू में 1 मीटर के बाद में ओकरा के ऊपर वाला काट दिया
1: मेन जौन तना बा
0: मेन तना बा ओकरा के काट दिया तो साइड से ब्रांच निकली शाखा निकली तो 2-3 गो शाखा निकली तो हरेक साइड में 1-1 गो शाखा छोड़ल जाये। 1-1 गो शाखा में से फिर ऊपर बढ़ी जब ऊपर बढ़ी तो फिर ओहमे 2-3 गो छोड़ल जाये बाकी फिर ओकरा के काटल जी तो फिर ओहिजा से एथी होई तो ऊपर से जौन बीच वाला कटले बनी ओहिजा से धूप लागी तो धूप लागी तो हमर पौधा बहुत अच्छा विकास भी करी आ एथी भी रही माने स्वस्थ भी
1: धूप जड़ तक जाए
0: धूप जाए के चाही धूप जाए के चाही
1: जी
0: जी। या साल में 2 बार कम से कम चूना क्लोरोपाइरीफास आ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मिला के आ 2 बार ओकरा के कम से कम 1 मीटर तक पोताई करे के चाही ताकि कि जैसे मान ली कि छाल बड़ुए ओकर तमन फाटे मत आ कोई कीड़ा मकोड़ा लगी हन
1: जी
0: जी।
1: अच्छा जैसे जौन अति सघन बागवानी बा
0: जी
1: तो एकरा में जैसे कहीं है मल्लिका बा आम्रपाली बा या और जौन बौनी प्रभेद बनी सन
0: हिमसागर बा
1: हिमसागर बा या अन्य जौन बनी सन या एकरा अलावे जैसे जामुने का करे के बा हमनी के अमरूद का करे के बा
0: कटहल
1: के करे के बा तो ये सब जौन बौनी प्रजाति बनी से उहे हमनी के लगावे
0: हां उहे लगावे के होई आ सब उहमे सघन बागवानी में जाई अति सघन बागवानी में उ सब ना हो सके जी।
1: अति सघन
0: बागवानी में आमे अमरूद हो सकला।
1: अच्छा
0: अति सघन बागवानी में आमे अमरूद हो सकला बाकी जौन बड़ुए तन माने उतना एथी ना करी।
1: अच्छा
0: जी ओकर विकास होखे के चाहिए तभी फल फलन आई
1: जी। लेकिन जैसे नींबू बाटे अनार बा तो ई कुल
0: अति सघन बागवानी में ई माने छोटा छोटा पौधा होला ऐसे आ सकला अति सघन बागवानी में लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर ब्रांच आई तो अगर नहीं ही काटत तो समझ ली कि हानि ही करी
1: तो काटे के तो पड़बे करी अति सघन बागवानी में
0: जी
1: जी। तो एह तरह से अगर हमने अति सघन बागवानी करते हैं तो अच्छा उत्पादन हो सके
0: बहुत अच्छा उत्पादन हुई ज्यादा हुई।
1: आ सबसे बड़ी समस्या बा होला हमनी का बड़ा पेड़ हो गई आन्ही आई पूरा फरल बा अब बदबदा के पूरा आम गिर जाला ई सब अति सघन बागवानी में नहीं होला ऐसे कि 7-8 फीट तक ऊंचाई होला
0: पूरा
1: हाथ से पकड़ करके ओकरा के

0: किनारा किनारा जैसे कि बीजू आम बा, बीजू अमरूद बा, एथी बा, जामुन बा, तो कुछ ऐसा ऐसा पौधा किनारा किनारा लगा दे तो हवा के रोक जौन पश्चिमी छोर आ उत्तरी छोर पर लगावल जला तो ओह में हवा के झोंका कामना करे। तो सघन बागवानी में, अति सघन बागवानी में बहुत फायदा बा कि किनारा किनारा को वायुरोधक वृक्ष जरूर लगावे के चाहिए।
1: जी जी जी, तो इस तरह से हमनी का अति सघन बागवानी करके अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। तो विजय बहादुर सिंह जी, आप अइनी इतना नीमन जानकारी देनी, एकरा खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: देखिए सुगिया बहन
3: जी,
2: कितना निमन ढंग से फरिया फरिया के डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी विजय बहादुर सिंह से पूछ रहे हैं
3: जी। जितना फरिया फरिया के वहाँ के पूछनी है, उतने हमने के ध्यान से सुननी है, उतने ध्यान से हमने के श्रोता भाई बहन भी सुन ले हो, चाहे अगर फायदा भी उठाई जाए जरूर उठाई जाए।
2: और सघन बागवानी हमने के फायदा वाला चीज वगैरह करे के चाहिए, लेकिन कुछ संदेश जान लिया जाओ तब
3: तो
2: अपना कार्यक्रम में चला जाए।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब

0: हो जाता है, जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
1: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
2: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी सुगिया बहन कितना हमने के जननी जा, लेकिन एक चीज बड़ुए सबके बीमा हो रहल बा
1: जी।
0: मवेशी के भी बीमा करत नहीं जा, अपनो बीमा करावत नहीं जा, लेकिन
1: फसल के भी बीमा जरूरी बा। बीमा
0: जरूरी बा। देखिए अभी सुखलक में कहीं बारिश होता कहीं नहीं खेत, ओकर बीमा अगर हमने कर जाए तो हमने के सरकार के तरफ से मुआवजा मिल जाए।
1: देखिए एक सरकार के तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बा।
0: हाँ हाँ।
1: जौना में खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करेला। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि, तो कभी तेज हवा और भारी बारिश किसान के मेहनत पर पानी फेर देला। ऐसा स्थिति में किसान के आर्थिक संकट से बचे खातिर भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कैले बा। ए योजना के उद्देश्य बा कि यदि प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग के कारण फसल के नुकसान हो जाए तो किसान के बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल सकता, जौन से वो अगला फसल के तैयारी बिना कोनो परेशानी के कर सकते हैं जा। ए योजना के लाभ सब किसान पात्र उठा सकता नहीं जा, चाहे वो ऋणी हो या गैर ऋणी हो, खस दोनों लोग ए योजना में शामिल हो सकते नहीं जा। और किसान अपना इच्छा अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकता नहीं जा।
0: देखी बात तरवा सही कहला है, और इसमें बीमा हर केहू के करावे के चाहिए, आयकर लाभ लेवे के
1: लेवे के चाहिए।
0: तो देखी अब बात कही में हमने के जोन बा माल मवेशी परावल जाए, क्योंकि माल मवेशी हमने के सब को रखत नहीं जा और रखे के चाहिए भी।
1: देखिए पशुपालन आज के
0: जी जी।
1: समय में जगत भाई आय के एक बहुत बड़ा स्रोत बन गई बा। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसन पशु हमने के दूध, मांस, ऊन और जैविक खाद्य उपलब्ध करावेला। लेकिन यदि ई पशु कौनो संक्रामक बीमारी के चपेट में आ जाए तो न केवल पशु के जान के खतरा हो सकता, बल्कि पशुपालक के भी भारी आर्थिक नुकसान उठावे के पड़ सकता।
0: तो इससे हमने के सरकार के तरफ से देखी पशुओं के बचावे खातिर टीकाकरण चलल बा, और इकरा में हर केहू के चाहिए सुरता भाई लोगन के जे माल मवेशी रख ले बा ओकरा के लाभ लेवे के चाहिए, और इस सरकार के तरफ से निःशुल्क बा।
1: लेकिन पशु के टीकाकरण जगत भाई कई तरह के खतरा से बचावेला, जैसे गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका, मुंहपका, ये सब बीमारी बा जौना से पशु के टीकाकरण से राहत दिलावल जा सकता। और टीका लगावे से पशु के जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता बा वो बढ़ जाला, पशु स्वस्थ रहेला, दूध उत्पादन बेहतर होला और उपचार होके पर होके वाला अतिरिक्त खर्च भी बच जाला। यही कारण बा कि विशेषज्ञ नियमित टीकाकरण के सलाह देवे नहीं जा।
0: तो देखिए लगले हमने के मौसम के भी जानकारी कर ली है
1: जी।
0: तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान अनुसार यह अवधि में 22 से मैंने 26 जुलाई के दौरान आसमान में घना बदली रही
1: जी।
0: जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले और हल्का से भारी वर्षा होके के अनुमान बा
1: जी।
0: सुबह में सापेक्षित आर्द्रता 80-90%, दोपहरिया में 55-60% रहे के संभावना बा। ये अवधि में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्वैया चले के अनुमान बा। तो देखिए यही के साथ हमने के समय
1: घड़ी के कहता है सब

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएमएन की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, हम आपको लिए चलते हैं भोजपुरी फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं कुछ चुनिंदा बेहतरीन भोजपुरी गीत। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बलम परदेसिया के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है इसे अनजान ने और संगीत चित्रगुप्त का है।

देख तू एक बेरिया, हंसी के जे देख

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में बलम परदेसिया फिल्म का ये गीत। अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में भैया दूज फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है लक्ष्मण शाहबादी ने और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भाई।

0: सस्ता और सुलभ
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करें 8700014242 पर।
0: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

0: इस गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के पूरे 7 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
2: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से 15 दिनों के बाद रेडियो कार्यक्रम, हाँ पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम या पत्रिका जो कहें, आयुष्मान लेकर एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं कि आपके अंदर जानकारियां दें, आप तक जानकारियां पहुंचाएं।

0: और उस जानकारियों का लाभ उठाएं, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। हर एपिसोड दर एपिसोड हम एक विशेषज्ञ डॉक्टर को लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं और किसी खास बीमारी के विषय में बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, कैसे ठीक हुआ जा सकता है ये भी बताते हैं, कहाँ कम पैसा लगेगा, आयुष्मान भारत कार्ड है उससे भी इलाज हो सकता है, ढेर सारी जानकारियां हम आपको देते हैं। हमारा जोर बहुत रहता है बच्चों पर। हाँ, आप लगातार सुनते होंगे चाइल्ड कार्डियक सर्जरी, चाइल्ड कार्डियक प्रॉब्लम के विषय में, बच्चों के हृदय रोग में अगर कोई समस्या हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे अस्पताल में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में भी बताते हैं, चाहे शरीर में किसी भी तरीके का विकार हो जाए उसको ठीक होना ही होगा, जी हाँ, अगर सही तरीके से इलाज हो जाए। और ये कार्यक्रम जो है आप तक हमें पहुंचाने में, यानी आपके राजेश को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। हमने कहा नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास, यहाँ हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। हाँ, पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं आकर यहाँ पर और बहुत ही उम्दा व्यवस्था है, जी हाँ, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलता है। आपके शरीर में कोई भी विकार होना या हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, सीधे सीधे डायल कर लीजिएगा और लाभ उठाइएगा। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है, इसको डायल करके जानकारियां ली जा सकती हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। घर में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और जिससे हमारा अनिष्ट भी होता है, फिर हम उससे उबर जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका निदान भी है, जैसे बर्न, जल जाना, हाँ इसका भी निदान है, ढेर सारी बातें, जलने या बर्न होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए, कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी क्या है, ढेर सारी बातें आज हम जानेंगे और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से हम उनका परिचय दिलवाते हैं।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्ण लता शिरोमणि है, मैं एक बर्न्स और प्लास्टिक सर्जन हूँ सर। मैंने MBBS मेरी डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे से किया हुआ है, MS जनरल सर्जरी मैंने एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया हुआ है और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई मैंने तमिलनाडु में चेन्नई से किलपॉक मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है सर।
0: डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी बातें करनी है, एक जिज्ञासा भी है, क्योंकि बर्न, जलना अपने आप में बहुत दुखदाई है, सुनने में ही बहुत एकदम गजब लगता है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ये क्या है, दोनों का तालमेल, इसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए।
1: जी सर, सो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सर, इट्स नॉट, दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, तो ये हैंड इन हैंड साथ के साथ जाते हैं सर। जैसे कि बर्न्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ होती है, गर्म पानी के गिर जाने से, गर्म चाय के गिर जाने से, थोड़ी सी लापरवाही, अभी जैसे खेतों में जो बर्न जला, क्रॉप्स जलाने के बाद जो वापस से खेती करते हैं सर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं, तो आग तो लग जाती है लेकिन उसके बाद पेशेंट का क्या करना है, कैसे डील करना है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो वहीं पे जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है साथ के साथ, ये दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ के साथ चलती हैं। तो जैसे बर्न्स के पेशेंट जो है, मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि ड्रेसिंग करके ठीक हो जाएगा, पास में रख के, घर पे रख करके ठीक हो जाएगा, पर छोटा से छोटा बर्न जो है सर, काफी बड़ा घाव बन सकता है, काफी गहरा घाव बन सकता है, जो कि मे बी लाइफ टाइम में कभी ना ठीक हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं सर। तो इसके लिए जो है बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना मेरा उद्देश्य है, और इसके लिए सर इस चीज की पढ़ाई करना, इसके लिए काफी पैशनेट थी मैं, तो जिसके लिए मैंने इस चीज की पढ़ाई करी है।
0: बिल्कुल सही, जानकारियां पहुंचाना, हाँ बहुत बड़ी बात है, जानकारियां होंगी तभी तो कोई कुछ करेगा, और ये रेडियो

0: कार्यक्रम पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, जिसे हम नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तरफ से लेकर आ रहे हैं, जो जमुआर सासाराम रोहतास में है, जानकारियां पहुंचाते हैं और निदान भी बताते हैं। पहले डॉक्टर साहिबा से हम सवाल पूछें, उससे पहले हम कुछ गुजारिश करना चाहते हैं आपसे, वो ये कि किचन में संभल कर काम करें, गर्म पानी अगर आसपास है तो ध्यान से चलें, कहीं भी अगर खेत में पराली जलाई जा रही है या जला है पहले से, तो किसान भाई या उनके परिवार के लोग जाने से पहले सोचें, यानी सतर्क रहें, सतर्कता में ही सब कुछ है। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए कि अगर जो जल जाएं, हाँ, तो सबसे पहले क्या करें जलने के बाद?
1: तो सर, जब सबसे पहला आग लग जाए सर, जैसे किसी को भी गर्म पानी गिर गया, बहुत तरीके होते हैं, गर्म पानी गिर गया, गर्म स्टीम जैसे भाप, गर्म भाप से हो सकता है, ये सब गिर गया, या आग लग जा रही है किसी चीज से, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है सर, उस आग को पहले तो पेशेंट को उस एरिया से, आग वाली एरिया से जहां से लगा है वहां से दूर करके जल्दी से उस आग को बुझाना। अब आग को कैसे बुझाया जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी जल्दी पानी वगैरह डालते हैं या कंबल डाल देते हैं, सही तरीका है, लेकिन कितने देर के लिए रखना है। पानी में जैसे आग लगी है, जैसे आपने आग बुझा दी है, पानी में कितने देर के लिए रखना है। कभी कभी लोग एक एक घंटे छोड़ देते हैं पानी चला करके, कभी कभी काफी कम समय, 5 मिनट, सो लगभग जो है 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर जो है पेशेंट को रखना है, पानी डालना है, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए जी। तो उससे क्या होगा सर, जो जलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होगी, खत्म नहीं होगा लेकिन वो स्लो होगा। तो स्लो होने से आगे जो है मरीज को काफी फायदा होगा सर आगे की ट्रीटमेंट में। तो जब ट्रीटमेंट है ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाती है, जैसे आग लगी उसी वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, पेशेंट के अटेंडर्स जो उनके साथ वाले हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है सर। तो जिस वक्त तक वो हॉस्पिटल पहुंचे पेशेंट की काफी मदद हो सकती है सर, जान तक बच सकती है।
0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में पहली दफा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ, डॉक्टर स्वर्ण लता बैठी हैं, इनसे बातचीत हो रही है और बहुत सारी जानकारियां हमने ली और आगे भी लेंगे। नंबर नोट करें, अगर किसी के साथ ये समस्या आ जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर आ जाए तो इस नंबर को डायल करें या पहले से डायल करके जानकारियां और ज्यादा ले लें। ये नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम, हाँ, का नंबर है और नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। जलने, बर्न होने की स्थिति में क्या करें, क्या ना करें, कहाँ ले जाएं, ये तो जानकारियां ले ही लीजिए, लेकिन दूसरे बीमारियों के बारे में भी इस नंबर पर जानकारियां ली जा सकती हैं। चाइल्ड, हाँ, कार्डियक सर्जरी की अगर बात हो या चाइल्ड कार्डियक बीमारी की बात हो, बच्चों के हृदय रोग की बीमारी की बात हो, तो भी इस पर बातचीत की जा सकती है। एक जानकारी और दे दें, अब पैसे की चिंता नहीं करनी है। भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है ना, उस पर हर तरीके का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया जाता है। बहरहाल डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, कोई जल गया, हाँ, चाहे जितना ज्यादा जला हो, कम जला हो या थोड़ा सा ही जला हो, उसे कितनी जल्दी, वो गुड टाइम कितना होता है कि उसे डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए
1: जी? सो सर, कहीं पे भी बर्न एनीवेयर इन द बॉडी एज सून एज पॉसिबल इज द, जितनी जल्दी हो सके इज द मेन थिंग, जितनी जल्दी हो सके आप आए। जहां तक सवाल है कि कौन जल्दी आए और कौन लेट आए, बर्न बहुत ज्यादा है, शरीर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बर्न आपके चेहरे पे है, पेशेंट के चेहरे पे है, पेशेंट के गले में गया है, या फिर ऐसी जगह पे पेशेंट ऐसे कमरे में बंद रहा है जहां पे बर्न हुआ हो और वो धुआं जो है उनके नाक मुंह के द्वारा सूंघा गया हो, तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली हायर सेंटर, टर्शरी सेंटर भेजना बहुत ही जरूरी है। बच्चे, वल्नरेबल पॉपुलेशन सर, जैसे कि प्रेग्नेंट माताएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इमीडिएट ट्रांसफर बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से सर, जैसे यंग लोग भी हो गए, तो अगर काफी ज्यादा बर्न हुआ पड़ा है, हाथ मुंह पांव अगर हाथों में है, तो तुरंत भेजना जरूरी है। उसके

0: अलावा सर काफी चीजें होती हैं पेशेंट के छोटे से छोटे बर्न भी इमीडिएटली मेरे हिसाब से तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि किसको क्या अंदरूनी बीमारी, डायबिटीज, आजकल इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब कुछ हो रखा है सर, तो वो आपको अस्पताल पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा कि किसको क्या दिक्कत है और हर चीज को, हर बर्न को ट्रीटमेंट करने की मोडालिटी अलग अलग होती है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि यदि जैसे भी बर्न हुआ है, जिस वक्त भी हुआ है, बुझा करके 15 मिनट पानी में डाल करके सफेद कपड़ा, साफ स्वच्छ कपड़े से उसको लपेट करके आप तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए लेकर के जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और यदि वहां से टर्शरी केयर सेंटर भेजा जा रहा है तो आप इमीडिएटली आ जाएं।
1: आप इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी आ जाएं, इग्नोर नहीं करें। एक बात बताइए, हाँ डॉक्टर साहिबा, हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार नंबर बता देते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं हैं? ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन आप पहले इसे बताइए, अगले एपिसोड में आपसे और भी सवाल पूछेंगे।
0: तो हमारे यहाँ पर बर्न में एवरीडे के लिए आपकी ड्रेसिंग की फैसिलिटी है, उसके बाद 24 घंटे आपको डॉक्टर साहब रहेंगे केयर करने के लिए, प्लास्टिक सर्जन, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन आपके लिए अवेलेबल हैं देखने के लिए, डेली वुंड ड्रेसिंग करना, करने से लेकर के यदि उसमें छोटी मोटी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, छोटी सी छोटी सर्जरी और बड़ी से बड़ी सर्जरी दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, आयुष्मान कार्ड के साथ अवेलेबल है। 24 घंटे के लिए आपके पास स्टाफ, बर्न्स का ICU अवेलेबल है, बर्न्स के ट्रेन स्टाफ अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि एक पेशेंट को, बर्न्स के पेशेंट को जरूरत हो सकती है।
1: एक बहुत ही जरूरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं आपसे कि बर्न में या पैसे की समस्या होती है या लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डॉक्टर के पास नहीं ले जाने का। क्या आयुष्मान कार्ड में बर्न को समावेशित किया गया है? क्या बर्न का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो सकता है और नारायण मेडिकल कॉलेज में क्या ये सुविधा है?
0: डेफिनेटली आयुष्मान कार्ड से बर्न का इलाज हो सकता है, चाहे छोटा से छोटा बर्न हो, चाहे बड़े से बड़ा बर्न हो, किसी भी तरह का बर्न हो, आयुष्मान आपको बर्न का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड कर रहा है।
1: आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वर्णलता, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह गए हैं, ढेर सारी जानकारियां दिलवाना हमारा मकसद है और हम चाहते हैं कि जानकारियां आप तक होनी चाहिए, तभी तो आप क्या करें और क्या ना करें ये जान पाएंगे। बहरहाल इससे ज्यादा भी अगर जानकारी चाहिए तो नोट कीजिए नंबर 6206803040, 6206803040, ये नारायण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नंबर है, आप इसको डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। आज बर्न होने पर, जलने पर क्या किया जाए, इसकी चर्चा हुई, आयुष्मान कार्ड से इसका इलाज हो सकता है इसकी चर्चा हुई, लेकिन हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं, बच्चों की बात है कि अगर आपके बच्चे में हृदय की कोई बीमारी है तो नारायण मेडिकल कॉलेज के इसी नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का मौका दिया। मुलाकात होगी पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में एक बार फिर से आने वाले समय में। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम में आइए हम बात करते हैं स्थानीय समाचार की। और संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग।

रोहतास में आप सभी श्रोताओं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांझर कुंड में पर्यटकों के लिए नई व्यवस्था लागू। सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फैसला। शराब, प्लास्टिक, ड्रोन और खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक मांझर कुंड में रहेगा प्रवेश। 5 बजे शाम के बाद पर्यटकों को मांझर कुंड से वापस लौटना होगा। आज से विशेष ट्रेन का होगा संचालन। जिले में भी ठहराव। सासाराम, रोहतास जिले के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 01911/01912 आगरा छावनी कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी होगा। डीडीयू मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन संख्या 01911 प्रत्येक गुरुवार 23 जुलाई से 24 सितंबर 2026 तक आगरा छावनी से कोलकाता के लिए चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 01912 प्रत्येक शुक्रवार 24 जुलाई से 25 सितंबर 2026 तक कोलकाता से आगरा छावनी के लिए संचालित होंगी। ट्रेन संख्या 01911 आगरा छावनी से सुबह 3:40 पर रवाना होकर टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए सासाराम पहुंचेगी। सदर अस्पताल में खुलेगा टीओपी सासाराम। सदर अस्पताल परिसर में जल्द ही पुलिस टीओपी यानी टाउन आउटपोस्ट की स्थापना की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को नगर अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार, अन्य पुलिस अधिकारियों तथा सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने मॉडल अस्पताल परिसर का संयुक्त निरीक्षण कर टीओपी के लिए प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया। सदर अस्पताल का ओपीडी बंद, भटकते रहे लोग। सासाराम, अरवल में सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को सदर अस्पताल सासाराम की ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद रही। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर चिकित्सकों द्वारा ओपीडी का बहिष्कार किए जाने से इलाज के लिए दूर दराज के गांवों से पहुंचे हजारों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ लगी रही, लेकिन ओपीडी नहीं खुलने के कारण अधिकांश मरीज बिना इलाज कराए लौट गए। सदर अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 1200 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बुधवार को भी जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचे थे। कई मरीज घंटों तक ओपीडी खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन पूरे दिन सेवा बहाल नहीं हो सकी। इससे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। मरीजों ने बताया कि वे सुबह सुबह लंबी दूरी तय कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। किसी को दवा लेनी थी तो किसी को चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता थी। ओपीडी बंद होने की जानकारी पहले से नहीं मिलने के कारण उन्हें समय और पैसे दोनों का नुकसान हुआ। कई मरीजों को मजबूरन निजी क्लिनिकों का सहारा लेना पड़ा, जहां इलाज पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। हालांकि अस्पताल की आपातकालीन यानी इमरजेंसी सेवा पहले की तरह संचालित होती रही और गंभीर मरीजों का उपचार जारी रहा। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है, जबकि आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी गई। सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकराई कार, नरसिंह छात्रा की दर्दनाक मौत। पार्टी से लौट रहे 3 दोस्तों की कार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हुई हादसे का शिकार। सासाराम, धौदार थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मंगलवार की देर रात सड़क किनारे खड़े टैंकर से एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार टकरा गई। हादसे में बीएससी नरसिंह के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों किसी दोस्त की पार्टी से लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और NHAI की एम्बुलेंस से घायलों को सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।
मृतक की पहचान शिवसागर थाना क्षेत्र के भद्रशिला गांव निवासी 19 वर्षीय अभिषेक

डीएम ने उत्कर्ष बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण। सासाराम जिला अधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बुधवार को विक्रमगंज अनुमंडल स्थित उत्कर्ष बायोगैस प्लांट का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली, उत्पादन प्रक्रिया और बायोमास प्रबंधन का जायजा लिया। आरटीआई नियमों के पालन का शिक्षकों को निर्देश। शिक्षकों का पंजीकरण 31 तक अनिवार्य। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चल रहा मूल्यांकन कार्य। शिक्षकों के आवेदन का 26 जुलाई तक मूल्यांकन कर रिपोर्ट राज्य को भेजना है। ऐप पर 31 तक शिक्षकों का पंजीकरण अनिवार्य। यूडायस नंबर से होगा ऑनलाइन पंजीकरण। आइए दोस्तों इसमें अब विस्तार से जानते हैं। सासाराम जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक प्रशस्त ऐप 2.0 पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। समय सीमा के भीतर सभी शिक्षकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और आइए एक प्यारा सा गीत हम आप लोगों को सुनवाते हैं।

इस गीत के साथ ही संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और समाचार के तुरंत बाद जिले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और उसके बाद आप सुनेंगे 7:50 पर विधानमंडल समीक्षा, और रात के 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। तो बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

0: गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
4: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, MPR स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, MLC की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा UDID कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
3: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
5: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
6: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
7: कोई मतदाता ना छूटे।
8: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं, विधानसभा में 87,383 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित हुआ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, डिजिटल दौर में भी बनी हुई है आकाशवाणी की विश्वसनीयता। और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से प्रदेश में

0: बारिश का सिलसिला जारी। सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थान पर और किसी भी समय इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज फिर विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर सदन में चर्चा करने में सहयोग की अपील की है। पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके सपनों तथा भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा में पहले सत्र की कार्यवाही छात्रों के प्रदर्शन पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठा। भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहे पर उनकी गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में राजनीतिक दलों के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल थे। इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे तथा सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा बढ़ता देख मात्र 10 मिनट की कार्यवाही के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भोजन अवकाश तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। भोजन अवकाश के बाद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में धन की कोई कमी नहीं है और सभी वित्तीय प्रक्रियाएं कानूनी रूप से की जा रही हैं।
2: प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में 87,383 करोड़ 83 लाख 1 हजार रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। ये वित्तीय संकट का जो मामला है ये घनघोर निंदनीय है और विरोधी लोगों को और कुछ नहीं समझ में आता है वो इस अफवाह को फैलाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विभिन्न विभागों में कुछ दिक्कतों के कारण भुगतान वगैरह की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन सबकी गारंटी है कि सबको भुगतान किया जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विधायकों और पत्रकारों पर हमला करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को

0: आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कल हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों की आड़ में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे।
1: कल जिस ढंग से विधायकों पर हमले हुए या पत्रकारों पर भी हमले हुए, सरकार ने दोनों का संज्ञान लिया है और जहां तक संभव होगा जो हमलावर है उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।
0: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने बिहार में हर घर नल का जल योजना की क्रियान्वयन रिपोर्ट आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दी। रिपोर्ट में वर्ष 2017-18 से 22-23 के दौरान योजना के कार्यान्वयन में आधारभूत सर्वेक्षण, विभागीय समन्वय, जल गुणवत्ता प्रबंधन, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी कई कमियों का उल्लेख किया गया है। कैग ने कहा है कि इन खामियों के कारण योजना का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हो सका है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को मिली थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वर्चुअल माध्यम से पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस पर 99,97,00,000 रूपये की लागत आएगी। संस्थान में राज्य की युवतियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर बिहार में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। एक रिपोर्ट।
3: करीब एक सदी पहले का भारत, न टेलीविजन था, न इंटरनेट और न ही मोबाइल फोन। सूचना और मनोरंजन के साधन बेहद सीमित थे। ऐसे समय में रेडियो की आवाज ने लोगों के जीवन में नई उम्मीद और नई जानकारी का संचार किया। घर घर तक पहुंचने वाला ये माध्यम धीरे धीरे देश की आवाज बन गया। समय बदला, तकनीक बदली और संचार के नए माध्यम सामने आए, लेकिन रेडियो की विश्वसनीयता और आत्मीयता आज भी जीवंत है। समाचार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी दशकों से देश की सेवा कर रहा है। गाँव से लेकर दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों तक इसकी पहुंच आज भी इसे सबसे भरोसेमंद संचार माध्यमों में शामिल करती है। प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में भी रेडियो ने लोगों तक त्वरित और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाकर अपनी उपयोगिता साबित की है। यही कारण है कि लगभग 100 वर्षों की इस यात्रा के बाद भी रेडियो की आवाज लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए राहुल कुमार के साथ निधिश्री।
0: राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि रेडियो प्रसारण समाचार और मनोरंजन के स्रोत होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं।
4: रेडियो डिजिटल युग में भी प्रासंगिक और इसका प्रसारण न केवल समाचार और मनोरंजन का स्रोत है बल्कि सामाजिक परिवर्तन सूत्रधार भी। चाहे आपदा हो या उत्सव, प्रसारण हर पल जनता का खड़ा होता है। यह दिन भारतीय रेडियो के इतिहास में उससे गौरवशाली प्रशासन का प्रतीक है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।
5: राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी न्यूज चैनल को और उनके सभी अधिकारियों को

0: उनको सभी कर्मचारियों को शुभकामना देते हैं कि लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं और बहुत विश्वास और भरोसा देश के लोगों को है कि और भी लंबी छलांग लगाते रहे और राज्य और देश का भला करते रहे।
1: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
1: प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज दोपहर बाद गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्व

0: 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज दोपहर बाद गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी और पटना समेत विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी खबर है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के तराई क्षेत्रों और राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और मुंगेर में लगातार बढ़ रहा है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। इधर बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गई है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर बह रही है। महानंदा, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। मुंगेर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलिया डी के रहने वाले बीएसएफ जवान चंदन सिंह की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। चंदन सिंह पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर जनरेटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। अरवल जिले के फकरपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में श्रमिक प्रशिक्षण सह कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन ने कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी जीवन चंद्रा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी पदाधिकारी के मूल वेतन से अगले 3 वर्षों तक 25% राशि की कटौती की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं, विधानसभा में 87,383 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित हुआ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, डिजिटल दौर में भी बनी हुई है आकाशवाणी की विश्वसनीयता। और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
4: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
5: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
6: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
7: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
3: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
8: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव
6: अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पूल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

0: बिहार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
3: सहरसा जिले के बनवाई टहरी प्रखंड में विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। परसबन्ने उच्च विद्यालय परिसर में डिग्री कॉलेज की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। कॉलेज खुलने से अब स्थानीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिले की दो बेटियों ने नीट यूजी 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सहरसा का नाम रोशन किया है। सिमरी बख्तियारपुर की तनुप्रिया ने 720 में 566 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 25,443 हासिल की है। वहीं सलखुआ प्रखंड के गोसपुर गांव की मनीषा कुमारी ने 580 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 17,917 प्राप्त की है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका के सहयोग से जिले के सभी प्रखंडों में विशेष रोजगार शिविर लगाए गए। SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज ग्रुप की ओर से आयोजित इन शिविरों में योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुरक्षा सेवाओं में रोजगार के लिए किया गया। चयनित युवाओं को पद के अनुसार 16,000 से 40,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, पेंशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छात्राओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए पतरघट से सहरसा के बीच पिंक बस सेवा शुरू की गई है। नई बस सेवा से पतरघट और आसपास के क्षेत्रों की छात्राओं को विद्यालयों और महाविद्यालयों तक सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन की सुविधा मिलेगी। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर जिले की सभी पंचायतों में जीविका दीदियों ने मद्य निषेध के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान ग्रामीणों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया और शराबबंदी के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया। उद्योग विभाग के निर्देश पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सहरसा में स्टार्टअप बिहार योजना के तहत पिच डेक प्रेजेंटेशन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए बताया कि 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है और कोशी विकास संघ मोर्चा द्वारा आयोजित कोशी रत्न सम्मान समारोह में सांसद दिनेश चंद्र यादव को कोशी रत्न 2026 सम्मान से सम्मानित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानसभा में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति मिश्र। बिहार विधानसभा में गुरुवार को नीट पेपर लीक और पटना में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर पहली पाली में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद ही अध्यक्ष ने इसे

दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। हंगामे के दौरान भाजपा के विधायक श्याम बाबू यादव ने आरोप लगाया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान उन पर और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया। श्याम बाबू यादव के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष के विधायक आईपी गुप्ता और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के बीच हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले विपक्षी विधायक बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और पोटिको में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उन्होंने विधानसभा परिसर में धरना भी दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के आलोक मेहता ने विपक्षी विधायकों ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने जनता के गुस्से से कोई सबक नहीं लिया है। उनका आरोप था कि सत्ता पक्ष प्रदर्शनकारियों को गुंडा बता रहा है, जबकि सदन में उनका अपना व्यवहार गुंडों जैसा था। वहीं मंत्री एवं भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के विधायक विनय बिहारी और रोहित पांडे पर उस समय हमला किया गया था जब वे अपनी कार से विधानसभा जा रहे थे। घटना के बाद विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए थे। विधायक, पत्रकार और कर्मचारी कार्यवाही समाप्त होने के काफी देर बाद तक परिसर के भीतर ही रहे। सुरक्षा अधिकारियों को आशंका थी कि प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। रामकृपाल यादव ने यह भी दावा किया कि छात्र कार्यकर्ता बनकर घूम रहे एक व्यक्ति ने एक महिला कांस्टेबल पर खंजर से हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की छवि खराब करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हालांकि भाकपा माले लिबरेशन के विधायक संदीप सौरभ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को यह समझ लेना चाहिए कि देश के युवा नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित हैं। दूसरी पाली में बिहार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रूपये का प्रथम अनुपूरक बजट विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य में वित्तीय संकट की बात को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि बिहार में धन की कोई कमी नहीं है और सरकार की सभी वित्तीय प्रक्रियाएं कानून के अनुरूप संचालित हो रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में किसी प्रकार का वित्तीय संकट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कई बार केंद्र सरकार से राशि मिलने में विलंब हो जाती है। ऐसी स्थिति में योजनाओं का काम प्रभावित न हो, इसके लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में आकस्मिक निधि से राशि उपलब्ध कराई जाती है और बाद में केंद्र से राशि प्राप्त होने पर उसकी भरपाई कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसे वित्तीय संकट से जोड़ना उचित नहीं है। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया, जबकि विपक्ष ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। चर्चा की शुरुआत आकस्मिक निधि से धन निकासी के मुद्दे से हुई, जो बाद में कथित वित्तीय संकट और ठेकेदारों के बकाया भुगतान तक पहुंच गई। बहस के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आकस्मिक निधि और आपदा राहत कोष के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य आपात परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार से राज्य की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि धन की कोई कमी नहीं है तो आकस्मिक निधि का बार बार उपयोग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से कई ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं किया गया और मुख्यमंत्री बदलने के बाद कई पुराने टेंडर रद्द कर दिए गए। इस पर वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कुछ पुराने वैश्विक निविदाओं को रद्द करने का कारण वित्तीय संकट नहीं बल्कि सरकार की नई नीति है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 11,45,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लगभग 1,40,00,000 परिवार सशक्त हुए हैं। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार रामाधार प्रसाद। मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही हंगामेदार रही। छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे

की वजह से पहली पाली में सदन महज 16 मिनट ही चले। प्रश्नकाल पूरी तरह बाधित रहा। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे को उठाया। राजद एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इन मुद्दों को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने कहा कि कल मुझ पर और मेरी गाड़ी पर जिस तरह हमला किया गया उसे छात्र नहीं कहा जा सकता, उनके हाथों में नुकीले हथियार थे। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मामले की तह तक जाकर जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के वक्तव्य से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आखिरकार सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मसला उठाया। सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पेपर लीक मामला पूरी तरह निंदनीय है, सरकार पूरी संवेदनशीलता से पूरे मामले को देख रही है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में विधायी कार्य निपटाए गए। विधानसभा से पारित 13 महत्वपूर्ण विधेयकों पर ध्वनिमत से सदन की मुहर लगी। इनमें बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 समेत अन्य विधेयक शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 के बारे में सदन को बताया कि इस कानून के तहत अब संगठित अपराध, भूमि माफिया, पेपर लीक गिरोह, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराध, सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने तथा वन संपदा की तस्करी जैसे मामलों पर भी सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। मंत्री मदन सैनी ने भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक के बारे में सदन को अवगत कराया कि इस कानून के तहत संपत्ति का वास्तविक मूल्य छिपाकर कम स्टाम्प शुल्क देने वालों पर बकाया राशि के बराबर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को व्यवस्थित करना है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पर सदन को बताया कि निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने सदन से पारित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2026, शहीद जुब्बा सहनी वस्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026 तथा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 के बारे में चर्चा के दौरान कहा कि इन तीनों महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना राज्य की तकनीकी शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अंत में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार दोपहर 12 बजे दिन के लिए स्थगित कर दी। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति मिश्र, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार रामाधार प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।

दिए, पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भाग

ना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448

बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखे जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म

0: पर समर्पित एयरफेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, बिना किसी देरी के हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट आपके मनपसंद कार्यक्रम में। और आप बड़े ही प्यार से इसे आप संजो कर रखते हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में, और आप बड़े प्यार से इसे कहते हैं ई मनपसंद। तो टाइम कम है क्योंकि आज हम आपको 8:15 से 8:30 तक ही आपको ये कार्यक्रम चला पाएंगे। तो इसलिए बिना किसी देरी के हम ये जो मैसेजेस आए हैं आपके वो मैं फटाफट पढ़ना शुरू करता हूँ। तो ये पहला मैसेज हमने लिया है, जो ईमेल आया है वो सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आया है। यहाँ से लिखते हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गोकुल चौक, गंग जला

सहरसा से बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमुद कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय और बुल्की वाली और फलनाचा। राष्ट्रीय काला बाजार एक हमारे श्रोता हैं जो उन्होंने सिर्फ गीत की फरमाइश की है, उन्होंने किसी का नाम नहीं डाला है। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। तो ये सभी सुनना चाहते हैं मेरे पसंद का गीत, तो चलिए मैं अपनी पसंद का गीत आपको सुनवाता हूँ। और मेरे ज़्यादातर जो पसंद होते हैं वो 90s और उसके आसपास के ही होते हैं, और उसके पहले भी लगभग वही 80s, 70s, 80s, 90s के ही मेरे होते हैं। तो आपको मैं सुनवाता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे मैंने लिया है आवारगी फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत अनु मलिक का है।

तो श्रोताओं, ये थी मेरी पसंद का गीत। इस गीत को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें आशा जी ने जिस गले को बिल्कुल एक अजीब इनसे तैयारी के साथ इस गीत को गाया था, और ये गीत इतना बेहतरीन हुआ था उस ज़माने में कि सुपर डुपर हिट ही थी ये गीत। और इस गीत में अगर आप ध्यान से सुनेंगे आँख बंद करके तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अगला मैसेज आया है ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ से। यहाँ से लिखते हैं रामायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज शिक्षिका हैं, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से निकहत प्रवीण सरफ आर्जू और सादिया तस्नीम। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रसारक जी को दिल से आदाब व नमस्कार। आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना, मेरे मेल ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, मैं एक बात बड़े अदब से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहती है अगर मेरा बस चले तो हम आप सभी लोगों के मेल हो या फिर मैसेज हो अपने इस कार्यक्रम में हम शामिल कर दें, लेकिन होता क्या है कि हम लोग बिल्कुल एक टाइम से बंधे होते हैं और उस बिल्कुल सीमित टाइम में ही हमें टाइम से सारे कार्यक्रम को पूरा करना होता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी जो है कि हमें अपने कुछ दोस्तों के मैसेज हों या फिर मेल हों वो हम नहीं कर पाते शामिल, तो उसके लिए आप बिल्कुल बुरा ना मानेंगे क्योंकि

आप ऐसी हमें मेल भेजते रहें, ठीक है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका भी नंबर लगेगा और आपके भी जो है मनपसंद गीत को हम अपने रेडियो के माध्यम से आपके लोगों को सुनवाएंगे। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी रानी सदफ, आरजू जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कापसड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले लखमीनिया जिला बेगूसराय से, शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और प्रवीण पुजारी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुहरकर।

एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप सभी को भी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। और ये सभी सुनना चाहते हैं पड़ोसन फिल्म का गीत। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि पड़ोसन में हमारे ग्रेट महमूद साहब भी हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज दी है। तो आइए सुनते हैं पड़ोसन का ये प्यारा सा गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम रात के 8:30 हो चुके हैं और आइए हम आपको अगले कार्यक्रम की तरफ ले चलते हैं। और अगला कार्यक्रम है विधि एवं न्याय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के न्याय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: We bring you a talk on environmental jurisprudence by Anna Apria, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
3: Jurisprudence की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी jurisprudence हो, whether environmental or otherwise, the starting point is always the constitution. तो constitution किसी subject के बारे में क्या बोलता है पहले हम ये देखते हैं and then we look at the laws which are created as a result of the powers given by the constitution. But एक peculiar बात है Indian constitution की कि इसमें बहुत एक school of thought है जिनका मानना है कि environmental constitution environmentally blind tha in the very beginning when in 1950s it was adopted because the term environment, environmental protection, ecological conservation, ye sare terms nahi the usme. But other school of thought on the other hand, which I

0: also agree with says that silence on the world environment does not mean ki कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का. लेटर ऑन वी विल सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके एनवायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं. और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजुअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मैंशनड होता है. इफ़ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल गवर्नमेंट जनरली कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मैंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आया हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विच इज मोर ऑफ एन अम्ब्रेला एक्ट जिसमें सारा एनवायरमेंट की सारी चीज़ें कवर होती हैं. बट दैट केम आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. स्पेसिफिकली सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो होते हैं जो वाटर और एयर एक्ट के अंडर काम करते हैं, एंड EIA नोटिफिकेशन जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से ही एमिनेट करता है. एंड देन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, देन अगेन आफ्टर स्टॉकहोम इंडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज कन्वेंशंस. कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, पेरिस अग्रीमेंट इन विच मेनी बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जिटिंग एंड एंटरिंग इट अगेन एंड अगेन, बट इंडिया हैज़ बीन कमिटेड टू इट्स प्रिंसिपल्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट. देन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, साइट्स एंड बेसिल कन्वेंशन जो वेटलैंड्स की बात करता है. तो ऑल्सो वी नो, तो आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स वी हैव ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो अडॉप्टेड इट इन टू आर डोमेस्टिक लॉ. तो दिस इज ज्यूरिसप्रूडेंस में, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्यूरिसप्रूडेंस इट इज ऑल अबाउट लॉ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ राइट बेस्ड मैनर कि कितने तरीके के राइट्स हैं, एनवायरमेंट लॉ कहाँ कहाँ से आ सकता है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन्ड इन द वेरी बिगिनिंग उसमें मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स. बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज़ समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स कि इफ़ यू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्दी चंद का केस, जिसमें देर वॉज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इशूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के. वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में CRPC जो पहले हुआ करता था विच इज़ नाउ BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज़ देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट

0: started taking up petitions by persons who were not directly affected. तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई. उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है. बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया. तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट. तो पहला एस्पेक्ट तो ये था. दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी. कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुँचने लग गई. थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने. नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए. बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में I will be a little brief. Article 21 में there were few cases, जैसे starting में court ने Article 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि there is a right to live in a healthy environment. वो दून वैली का केस था, specifically speaking rural entitlement केंद्र versus state of उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि there is a right to live in a healthy environment. बट उसमें Article 21 mention नहीं किया. बट eventually आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एम सी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरी से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज़ पोल्यूटिंग द गंगा रिवर. इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज. सो दिस नाउ राइट हैज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

ने बोला कि कोई भी इन्वायरमेंटल रिसोर्स कैनॉट बी प्राइवेटली ओन्ड बाई समवन, इट इज हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द स्टेट फॉर द पब्लिक ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया कोर्ट ने, जहाँ पे स्टेट इज हैज़ अ ड्यूटी ऑफ केयर कि उनको इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने हैं फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड ऑल दीज थ्री डेकेड्स ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड एडवांस्ड इंटरप्रिटेशन विच द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव डन इवेंचुअली लेड टू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, जुडिशियल ट्रिब्यूनल, विच इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट इन 2010. एंड इसके पहले, इसके पीछे भी काफ़ी सारे जजमेंट्स में आप देखेंगे कि बात हुई है कि देयर नीड्स टू बी अ सेपरेट ट्रिब्यूनल जहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंटल के मैटर्स सुने जाएं. लॉ कमीशन रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें स्पेसिफिकली एनजीटी, नॉट एग्जैक्टली इन दीज टर्म्स, बट ऐसा बोला गया है कि देयर इज अ बिग नीड बिकॉज एन्वायरमेंटल लिटिगेशन इन इंडिया इज ह्यूज एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कीप गेटिंग बर्डन, सो देर इज अ नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल. All I could say is, while talking about jurisprudence, is the judiciary has given a very well lit path. Now it is up to the institutions, the governments, and the civil society to walk on that path and eventually lead to a cleaner and a better environment for all.

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे विधि एवं न्याय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के न्याय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पल में यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। तो बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के

0: दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
3: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

0: जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुँचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी का हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं लोकधारा कार्यक्रम की तरफ और सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं गज़लों की दुनिया में और सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन नगमे। और ये पहले गज़ल हमने पसंद किया है आपके लिए ग़ुलाम अली की आवाज़ में, जिसे लिखा है कातिल सिफाई ने और संगीत ग़ुलाम अली की है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस महफिल में और सुनते हैं ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल। एक और गज़ल पेशे खिदमत है गुलाम अली की आवाज़ में। इस गज़ल को लिखा है मोमिन ने और संगीत गुलाम अली की है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में प्यारी सी गजल। एक और प्यारी सी गजल पेशे खिदमत है गुलाम अली की ही आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे गज़लों का कार्यक्रम महफिल, और इस गज़ल के साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। तो बने रहिए हमारे साथ FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी के सासाराम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

0: हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

0: भैया
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दीवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है।

के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा।

बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: बदकम्मा
1: बदकम्मा ओ बदकम्मा।
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
4: ओ पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
4: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
4: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
4: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: आइयो आइयो, पहला बोलना ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे हैं गाना गाना।
6: चल चल
3: देवी, तुम बदाना बदाना।
2: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन।

0: और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे, महमूद साहब ने आरडी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

है यही, आओ ट्विस्ट करे सपना मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही ना।

0: नहीं।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
0: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, नहीं, बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो।
3: ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
4: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये

0: मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
1: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा।

साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गा

0: तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात के पूरे 10 बज चुके हैं और इसी के साथ आपका मनपसंद कार्यक्रम हिंदी एल्बम सॉन्ग यानी रस रंग अब शुरू होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम का ये पहला हमने एल्बम लिया है, बेस्ट ऑफ नुसरत फतेह अली खान। उन्होंने गाया है बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ से करते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब लीजिए सुनिए हंसराज हंस की आवाज में एक प्यारा सा गीत जिसे लिखा है श्याम बोलकर ने और संगीत आनंदराज आनंद का है।

अभी आप सुन रहे थे हंस राज हंस की आवाज में ये प्यारा सा गीत, एल्बम का नाम था चोरनी। अब हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में एक प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है फैज अनवर ने और संगीत साजिद वाजिद की है, और एल्बम का नाम है दीवाना।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में दीवाना एल्बम का ये प्यारा सा गीत। अब लीजिए सुनिए रहबर एल्बम का नाम है, तो रहबर एल्बम से ये प्यारा सा गीत हमने लिया है जिसे गाया है अलका याग्निक ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आप सुन रहे थे रैबर एल्बम का ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक की आवाज में। अब लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की आवाजों में, जिसे लिखा है टोनी कक्कर ने और संगीत टोनी कक्कर की है और एल्बम का नाम है मिले हो तुम।

इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात के 10:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, जिसे आप बड़े ही प्यार से कहते हैं चित्रपट तराने। बिना किसी देरी के हम आपको सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है साथी फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू ने और विपिन सचदेवा ने। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म का साथी फिल्म का ये प्यारा सा गीत कुमार सानू और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में। अब लीजिए सुनिए पड़ोसन फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार मन्ना डे और महमूद ने। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

घोड़ा चतुर एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला।

अभी आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। अब लीजिए सुनिए फिल्म दिल आसना है। इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, इसे लिखा है मजरूह ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

अभी आप सुन रहे थे दिल आसना है फिल्म का ये प्यारा सा गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था मजरू ने और संगीत आनंद मिलिंद का था। अब लीजिए सुनिए जानवर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और सुनिधि चौहान ने। इसे लिखा है समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने, और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर, जो कि इस प्रकार हैं।

कल सुबह 5:51 पर आकाशवाणी संकेत धुन 5:53 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम। 5:56 पर हम आपको सुनवाएंगे आरंभिक उद्घोषणा एवं मंगल धुन। सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस संगीत सरिता भूले बिसरे गीत विविध भारती के कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी के हमारे मुंबई केंद्र से। और 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह के 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर हम आपको सुनाएंगे देशभक्ति संगीत। 8:20 पर आप सुनेंगे पसंद आपकी पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं संदेश आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 9:10 पर हम आपको सुनाएंगे गीत मलिका।

9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार विविध भारती। क्या ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर। सुबह के 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी का हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत लोक माधुरी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग रसधार। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग यानी विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। और 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल विविध भारती की गीतमाला। 2 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। 2:05 पर हम आपको सुनवाएंगे इलाकाई खबरें आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। और 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। 2:15 पर हम आपको सुनवाएंगे मध्याह्न समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे फिल्मी गीत हेलो सहेली गीतों भरी कहानी। शाम के 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे घोषणा एवं कार्यक्रम विवरण।

0: 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर, 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत, 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास, 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, 7:50 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, और 8:15 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, सुबह रात के 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, 9:15 पर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम बंदगी, 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण, रात के 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, 10:15 पर हम आपको सुनाएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स रस रंग, 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने, 10:15 पर हम आपको अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान सुनाएंगे, और रात के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, और 11:10 पर हमारी कल की सभा समाप्त हो जाएगी। तो ये थी हमारी कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची, तो बने रहिए हमारे साथ एफएम के 103.4 MHz पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ, और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी
2: विषय पर अपनी बात।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ

एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।